लवियो को हे राम ननाई की भक्ति से कचरी वलैना से लत नविगनो पंगलवी ननाई नी खनबी दुना लवियो को हे राम ननाई की भक्ति से

0: 那那是给八个的我把他的给他呢把你给很多。嗯。
1: 都谢谢是的来的吧。哎那很多了个他们是都谢谢你。
0: 哦啊哎是的同那把他把别的给你的还不等你呢。
1: 爸爸啊他把你说啊是给你们的可乐等你比哟。
0: 嗯理解。啊一般的所有的理解。妈给你们的够。啊啊就的这英语新妈妈的你班养可以给他说。December ki tang kun gama panda Maharaj Sandra ki tiki mari suba mazai bungo oina phangja ki Apopi ki mingna Kogi chongtham chanu Kokseswari debi kawai Tikendajit ki anga ngwairinga ki mingdi na Koyrin kaw
1: Baba, makhali biro
0: Pingling iti ki hauna Tikendajit che Mathauna lai ba Hai ki bada huongda ba Sarit charana singba yaamna hai ba anga ngwaino Dum haura ki Pungkak carok pada mahak se, sabol ning tina thoba hai ki. Mangwanda mina lakchaba yaadaba magun namachu chelame. Puk pada ki mangwanda akiba hai badu yaurak di ko.
1: Mahak ke sabol tongba tam binaba oza guru ka lai bra.
0: Lai, ning thogi masa masu singbu mahi masing takpi naba oza. Tariki di thang ta tam binaba oza, loi na lai. Trikenda jitine, masa ki sahi tarani thoi kaktang ayri ngay da sabol tongba se adum mahi gare. Magi guru di Bedam Singha kawe. Hari boza se sagol thobuda maming leira banu pan. Mag ning thogi sagol lanbi amas oira me mase ko. Hari boza sina tambi bedagi tikenda ji che sagol thobuda su magi lamba leiram de. Sana kununda tikenda ji ki maming ta tab da thak thak thak ta ning na bazani ki kinari ba. Punamak sigi matak ta mag se mama leba pu yam na nung si jaba misak amas oira mido.
1: Mabu miam na jubras tikendrazit haina su kau nei kwa.
0: Kau nei. Makha mutara ko. Maha ki mapai bungo chandra ki tri lai khidra ba matung da. Mama tina da ba sur chandra na ra singha san na muk ka ki. Hai ba di chandra ki tri lai khidra ba matung da sur chandra na nintho mu oire hai ba ni kwa. Matam du da tikendrazit pu senapati pham puhalami. Miam na maa ki thongna lingzien amadi prajabu lu na topa. Adu da. Mayam nama aku takut nana mereka. Madu ubudah pukmin nata bawa mana orang pasi nih. Yam nak kalah mi. Kau. Aduh tadi mama ti nata bawa macin mana usingi marakta nungsi nata bagi maram mama caw nalera. Kau. Mayam na tiken desit pu yam na nungsi na suhna bawa mangonda pamnai budagi. Praja phau puna yam na ya bawa asin asu tiken desit pu kalak lami. Magi mang na bata silami. Makoi yam marakta pakas nasu amani. Mahang nak kuai degi he na tiket nasi punung siram deko. Miam na tiket nasi pun thagat nabo urga. Magi thamoi da kangam nabo kalak pama poglami. Mahak Inggris singasu marup oiram emase. Maharaja Sunsanda nasu pakagi misang dalerami.
1: Mama amatan nabo poira di nushi naramgani ko.
0: Mama amatan nabo po oiram su ning thau masa sing dina. Amatan nushi nadi bema. Ning thau kubam munna naba. Patah wakal dah, tuh mukhan tu nelayi bezan. Asyik umba nungsiya tu bawa wakalon singa se, Inggris singa lain nak kangami. Kau, aduh ka kudung sabar lau nena ba, hai sing laba mipat ta Inggris na kanu kondar bezani. Asyik umba tanza pang nena ba kono tu na kup nasiya tu na tuh nelayi bezan Inggris sing se kau. Surcandra pang tu ba ning thau amas uarami. Aduh nama ramu erga Manipur ki ning thau kubam se. Pibam siap na layram de. Aduh na Inggris sini lalung kan sin betul. Aku ini trikin de sini lain kangami. Aduh ko mahang na asum na wasak lami.
2: Manipur ke jubras trikin de sini ayam praja biam yumang tu wasak ceri. Madudi, thawai thara bersu imalai pak Manipur budi yek na bagi mukut lagi sum choy choy dina kalungani.
0: Mahki waising sini na Manipur masasingi thamoida mama alai pak nungsi bagi wakal yakayan ki. Kulaya bapa mati jana layaba cawkat laba Inggris singbu junggoi thang ta kagtana mai tiba pika ni hena cap yung lepa metrik endajina.
1: Mahang nama thau na layna akibat laytana maram dambukan na bohot na badanya. Magaloi na kibadoa thanggal general hai bani ko. Mami sesum braba.
0: Jumme thanggal general hai nupaduni ko. Thanggal general hai nupasi jubrasgi wa tanafamne. Mathau na maringjen bapa da pau kiba. Sehi yam lah, nupani. Trikin di sini mari pakai miam bu, yam na nungsi jawi ki wariye masuk lahiriye, nang taning dro.
1: adusu libio baba
0: lidoini lidoini sa pung chang na taro no ma kamdau ge habda ma bu yeng thina don ta laiba pakasna haibe se masina mayam bungna ningtho oiri haibe gi mata gum aina apa amada tawguni khanduna sanjin thongi mayai makta da chobor sanna bajani
1: a
0: sanari ba singdu pakane adugo magi khungloi kharane pulap sanna bajani Hari pakana thoi ba khudingi ne bengun si hau na khong bajani
1: a
0: aduda trikend jina praja miyam na chatnari ba lambi thing ba haibe se masi chumde मताई डे थाईचे लगा सानो असुम नहायर बुदा पकाना मान बुद तोर बुदी हेक्टर टिकेंद जिन ऐयर पपी है जना याम न शाओ बुजाने अधुगा मरु लंग खायब साजिन नरगा टिकेंद जित की मामाई डे चौबोर मरु दुना थोम जिन लंब जाने
1: अधुदी बाबा मखोए नी फुने लग तबरा
0: ताखुनी नंग बो अधुदगी टिकेंद जित शाओ न मई होले दो पकाबु फूगने ने तानरे अरे पका किमंदना मयामबुंग महाराज की सना संगाई रे चिंचिंग रे अजुदा टिकेन रजिना महाराज की सना नाकता चिंचिल लगतुना पका की खुंगुल ली रे दो मयामबुंग दा पका की वारी पुंबली रे माबु अमुक तो उन्हें जगे हाई जब दा मयामबुंग ना मिचंग मिखाई नाई बा मोंग दा महाक ती खंगे थाजे दरका इमुंग जंग का येंगो न हैरमी थाजे दरका येंगो हाई बदु दा टिकेन रजिना मयामबुंग बु थाजे दबगी अमरोम दना मयाम बुंग ना माबु मिराय रगा पुकमिन ना बा मनाओ की दमकता लेप की ममी चाऊ न तारी बतो मैं एक शेंग न उरमी मधुदा थमोई शोक न टिकें रजिना असुम न हाय रखी
2: या जरे या मुंग महाराज याम बुंग ना इसलिए ना ऑक्सिंग की मरक ता असाल मिराय ना आई बा इमित मत रुझरे ऐ की इमाम मक्त द चेंसिंग की बा पाका बुलाक के हाय बंग अंबीवा ऐ थमोई शिन या जरिंग की याम बुंग ऐ ऐ शना संगाई संगुन सुतीजरो अदुगा मशीमदि काउबी गनु यांबो शना मांगदंग सि लेपसेरम लिबत केंद्र जित की सक्तम मशीना आरोई बनी यांबो अबु खन्न शना ना द लेपसेर रो यांबो
0: वापम मसी हायर मगा थोन यांगना टिकेन जित हन खिरमे मयामु न खनकी हाय की बिदो होंग द बन्नु पानी हाय की बवा सोई द नंगा खिगनी महा न हायरम लिबो वादुसु महा की काना न बन्नते प्रजा मियाम की दमकतनी मियाम न चन्नरी पर लंबी बु थिंजिंदु न साना बा हाइबसी याम न चुम दबनी हाइबसे खंखिरमे अमुक्सु अचुम्बा पामजबा जुबराज टिकेंद्र जिना मागी मनाते संगलक लरोय हाइरम बदुना हेन नुवाइरम दे पका लाली हाइबदुसु खंगलमे मयाम बना निंथो ओइरी हाइदुना कनाबुसु कीदना फत्ता बथब कयाम तोबुदुसु खंगलमे अदुबु कोनुंग मनुंगदा फजदबा खन चैनब थोनबदि पामलमदे
1: अदु मखादि मखासुलि बिरो बसे
0: आ अदुगी सना कोनुंगदा इरांग थोकपा होरे सूरचंद्रना पकासना पुदुना कोलकाता द सेनग्रे
1: आ
0: मखोइन अंग्रेज सिंगदा मतिंग पंगबिना बा हाइजरुरे
1: ओ
0: अरे ई सूरचंद्र पांगदब निथोमनि थोंगदुदा अंग्रेज सिंगदि हाता हाकजबदा खुत थाजिन बगा चा मानलामे मथमोइदा तंजासी नानथो अनब यादरे हेन खलमि
1: निंथौ मचामासे नुसिनदबा निंथौ खुबम हनजिनानब हनबदा फत्ताब सरो हाइबा अंग्रेजिंदि याम नुङायरामगनि क्वा
0: नुङायबगि जाति करि हंगुरनि खुदोंग चाबा अचेंग ब कुपनि यिंगलमि असुमन लैबदगि तंजामा फंगलमि अंग्रेज लानमि खरना सना कुनुसि कोइसलमि अदुगा नोमै राउंड कया कपसिलमि मिचम प्रजा कया असो पन याउबद नतना असी अना कया सु यौरमी मसी की मरु होइबा मरमदी युवराज तिके नजितपु फान अनब होनबनि सूरचंद्र अमदी पकाना महाक लेरी खैदी हाइबदी तिके नजित लेरी मखैदी निंगथो ओइन पान बद खुरुक सेलनी हन खलमी आ मरे बापू नु शिवगी वखलदी मखोइ करिम त खलमदे
1: अंग्रेज ना अहिंद लोन लाकपदन्या तिके नजित ना करी तौख्या
0: एपा मखाता के से टिकेन रजित छाव ना मई होरे दो अतुम नोंसा हौदो पग चा मानगरे मरा लैजेदबा तुम दुना लैजेबा मिचम प्रजा नुपी अंगांग याउना असी अना थोकलबनिना प्रजा मयाम सु होरे अदुबु अचुम वाइल फंगनगनी हाइबगी थाजब पीबदगी असाव बखरदी नेमथगरे थौना फरबा जुबराज ना अंग्रेज सिंगबु मराल शिरमी
2: ताओ साहेब नखोइन नरोल द लांदा अदुना मिचम प्रजा कया असी अना नहनबा सना कोनुगुलो न लोक्षिन गे होना बम न मगसे ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ
0: ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯖꯨꯕ꯭ꯔꯥꯖꯅ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯦꯖꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯍꯜꯂꯝꯃꯤ
1: ꯃꯈꯥꯗꯤ
0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯗꯤ ꯅꯦꯝꯊꯕ ꯉꯝꯂꯝꯗꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯍꯦꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ

नहारोल की खोंजल ताबिरे ताबिरी बसे आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल दी हाउसिंग में कुछ खरे की मनुंग डा सिलोंग डे की रिलेटा इंग्रजी टे पाव ताबिरे सी

0: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, तरह नोक्सरी का नाम विभिन्न बनो.
1: नमोन त्याम तंगा पुत्र मेमा.
0: हुई मिंग दो उम्दंग है भी.
1: मेमा
0: मेमा हुई हुई. हाँ, करम बिशाई तासी के तक भी. हाँ,
1: तो नो नंगोरी की
0: इसे खा लगा मुक्त हुई अतोप इसे खन भी रही हम नुमाय
1: खनगे
0: फोन खाने हुई हुई हजु इसे होने अतोप इसे खन भी रही हम नुमाय
1: खा
0: हुई

0: पार्टी चाहिए?
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मखल मछल की थोंगन थोंगन ब थौरम सिंह ताबिरी बस आकाशवाणी इम्फाल के FM संगाई चैनल ने हौजिक फुंखम से लांथुक सरी सैसक पाम की सैद तखेलम मंदाकी ने सकप इसई सिंह तखेलम मंदाकी आकाशवाणी इम्फाल की मतम इसई की सैसक पी एम ओइब तनतना मणिपुरी डिजिटल फिल्म की ओइनसु सगनाई रबी सैसक पी एम नी इंग्लिश सिंह अनी मरीदा रिलीज तौखिबा मणिपुरी फिल्म लैसिल लगी उरोग फिल्म सिदगी मियामना थोइदोक हेंदोकना मसक खंगबी सैसकपी अमा उइखी हाइबयाय लैसिल लगी उरोग फिल्म सिदगी सैसकपी असिना सखिबा इशै जी सनामचा शर्मना सैरेंगबा हामोम नबना सैरंगबी सैमतंग कुदुल तमजरी मियाम पुने तामिनेशी

आकाशवाणी इम्फाल ना संदोक्षा टॉप टेन मणिपुरी फिल्म इसई दा कैरक हन्ना मफंग कनबंगम ख्रबा तखेलंबम मंदाकिनी ने सकपा इसई सिंग लक्त निंगाई चाउ बनंग से इसई में एक सी तावदा दुमक मैं आमने खंगबीरंग बनी अमूब कुंडो फिल्म की इसई नी इसई की सेरिंग बना एनार मैटे सेरंग बा ऋषि पोलेम से सक पी इसी की इसई कुरोल तमजरी तमिनसी

0: ꯁꯥꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:55 ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ 146 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯨ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ 1949 ꯀꯥꯔꯒꯤꯜ ꯂꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯔꯒꯤꯜ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯗꯤꯕꯁ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯒꯤꯜ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯗꯤꯕꯁ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ MSFDS ꯀꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯀꯥꯔꯒꯤꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯒꯥꯔꯤ 356 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ 146 ꯁꯨꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 10:00 ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ AIR ꯅ꯭ꯌꯨꯁ, DD ꯅ꯭ꯌꯨꯁ, PMO ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯍꯥꯠ ꯖꯣꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯍꯥꯠ ꯖꯣꯁꯤꯅ ꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ 2026 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯦꯛ 2024 ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ FIH ꯌꯨꯠ ꯍꯣꯀꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯇꯤꯝꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 3-1 ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯍꯣꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ꯫
2: बहू जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
3: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओ,
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
0: ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ꯫

सलीबा थोरम परेंगी पुंग तरा नितो मिनी तरा लांथोक चगनी रेडियो लीला हिक्थर बचंबोल लीला आईबा सगोल से महेंद्र पुथोक पुता तेंबांग बा असेम मंगलेम बा लीला पुथोक बा माइबम इशाकांता

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक डलीदगी रेलेदा भारतकी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीना मियाम द पीबा पुक्निंगी वा मन की बात की चामग कुंथ्रा तरुक सुबतांक ताबिरसी मसिगे हेक मतुंग मणिपुरी वाहन थोक ताब फंगबिगनी

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTS और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
5: आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?
5: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा?
4: याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती।
8: आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घात निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक

अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में

0: संवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए।
3: युवा मन की बात की चामग कुंठातरुक सुबतांकक हौजी अमलो बिरसी मणिपुरी वहंथो
4: आइगि नुशी जरबा इरेबाकचा सिंग खुरुमजरी आइखोइगि पुनसिदा नुमित खरदी निंगसिंग नबगिदमक कैलेंडर येंगबगी मथौ तादे ngasii जुलाई कुंतरुक असी अदुगुम नुमित अमनी ngasii असी कारगिल दिवस नी नुमित असिदा आइखोइगि थौना फबा लानमी सिंगि अंगक पथौना अदुबु निंगसिंग हले लोइनना आइखोइबु मखोइगिदमक चौथोकचब पोखले कारगिल गी वांगलो वांगलब चिंगदोल सिंग खुदोंग चाखिद्रबा इसिंग नुंसित की फिबम येकनबना सिंगनरकप पुनमक असिबु आइखोइगी लानमी सिंगना थवाई खुबाकता हाप्तुना मायोक याखी आइखोइने इमा भारतीगिदमक लैजब पुंब कथोक चखी ngasii कारगिल दिवसना लाकपदा थौना फबा लानफमद थवाई कटख्रब लानमी सिंग अमदी थौना फबा लानमी सिंगि मफमदा इकोक नोना इकाई खुमनब उच्चरी मरुफ सिंग ngasii आइखोइने थौना फबा सिंग अदुबु सुपनगी निंगसिंग बत नतना अनौब मिरोलदा मखोइगी थौना फबगी वारीदु ताहले वाखलोन असिग लोइनना चही असिदा थोइदोकपा सोरिया विजय जत्रा अमसिली जुलाईगी तरामरीदगी दिल्लीगी नेशनल वार मेमोरियलदगी खोंगसान खिबा मोटरसाइकलगी खोंगचत अदु द्रासकी कारगिल वार मेमोरियल फाव योगनी मसिगी पाउजेलदी वन राइट वन नेशन वन सेलूट हाइबसिनी खोंगचत असिना लैबाकीदमक्त कटखिबा थवाईसिंग कैदौनुंग काउदे हैब खंगले मरुफ सिंग ngasii भारत न मसागी लानमीगी थौनाग लोइनना टेक्नोलॉजीगी कैपेसिटी सु मरा चेरहले नुमित खरनीगी ममांगदा INS महेंद्र गिरीबु भारत की इसिंग लानमीद यौहनख्रे अनौब लानगी जहाज असी भारत डिजाइन तौबनी भारत साबनी मसीद इरेबाकी पोलम चाद 45 सिजनरी ngasii इरोमदोम लेपचबा भारत की पांगल हेंगलपगी खुदमने हंदक की था असिदा DRDO ना पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट माई पाकना चांगेंग तौख्रे माई पाकप असिगी मरुमदा आइखोइगी वैज्ञानिक सिंग अमदी इंजीनियर सिंगी अपुनबा होनजमनी नुमिन निनी हुमनीगी ममांगदा DRDO ना कुसा मिसाइल माई पाकना चांगेंग्रे मरुफ सिंग ngasii ngakselगी पोलम पुथोकपबु ओइरो मपानद थादोकपबु ओइरो नत्रगा मरुप ओइबे लैबाक सिंगा राजनीतिगी मरी थमनबा असिना सिंगबदा मपुंग फाना मका लामना मांगद चंगसिलकली थासी हौरकपदा आइहाक इंडोनेशियाद चलुई मफमदुदा ब्रह्मोस अमदी अतोप मिसाइल सिंगी मरमदा अचौबा यानब अमपुरकले ngakselगी खुलाई सिंग अमदी टेक्नोलॉजीगी लमदा मालेमगी मियामना भारत थाजब थम्ब हेलकली आइखोइ पुनमक कारगिल विजय दिवस असिदा लानफमद थवाई कटख्रब अथौब सिंगी मफमदा इकोक नोंजरी लोइनना सोइद गामदबा तौब गंबा अमदी इरोमदोम लेपचब भारत अम सेम गंबनबा फिरेब अदु अमुक कहन्ना सेसिल हलसे आइगी नुंसीजरब इरेबाक चा सिंग मन की बात की हौखिब तांककता आइहाकना मियामदा केच द रेन गी खोंजंगी मरमदा वफम थमखी आइहाकना मयामदा नोंगी नोंलिक खुदिंगबु चेक्सिन तुंगसिन नबगिदमक मियामगी इहौ अमा सेमनब हाइजखे केच द रेनगी पाउजेलसी यामना लाइ नोंग ताब मफमदुदा इसिंगदु योक्सिनदुना थम्बिबा जुलाई मरीदगी लैबाक सिन थुंगना थोइदोकप खोंजंग अमा चथरी मसिगी खुथांगदा नोंगी इसिंग तुंगसिनबा ग्राउंड वाटर रिचार्ज 아리바 이싱 레펌싱 나우나 생독바 아마디 우파미 타바나 칭바 콩젤 양나 차타리 콩강 아마디 사허 판차이엣 아마디 소셜 오르가나이제이션 싱나 마팜 쿠딩다 타와이 학창 야우나 호나리 마팜 카라다나 푸크리 아만바다기 레콤 코톡리 마팜 카라다나 구하 아마디 이풋 싱부 아묵 힝갓 할리 팅질루라바 보어웰 싱 하우직티 ground water recharge ki medium oire maruf singh madhya pradesh ki sidhi zila da chaurakna pokhri li singh ama chamanga taukre narasinghapur gi amrit sarovar su semjile maharashtra gi nasik ta ising yamna tungsina nabagi thaurang leire andhra pradesh ki nandayal gi gram panchayat pumba khongjang asida yaugduna ariba pokhri khudimak sizinaba yahalle ikhoigi sahar singh su hanthaba natte Satisgarh gi korba orissa gi bhuvaneswar amadi andhra pradesh gi vijayanagaram su khongjang asigi singthaningai oiba mahai uba phangli ikhoi pumnamakna anakpada leiba pukhri guha amadi iput singi thaudang lauduna isingi irik khudingbu kanse ngasi kankhiba irik tu lakadoriba mirol gi khwaidigi chawba maralne aigi nungsi jaraba irai bakcha sing numit kharani gi mamangda glasgow da commonwealth masana haukre leibak miyam khudimakna bharat ki timbu puning thogatpa gi wahi lepalaitana pirakli makhoina sanaroi amadi lamjeloi khudingda thoidok hendokpa masana sanaduna miyam gi puning sumarpa ngamnabagi damaksu nizari maruf sing aikhoi gi naha singna haukhiba numit singda sana khonabada phajaba mingchat kaya purakli pv sinduna badminton da japan open gi mingchat phangkhiba ahanba bharat macha oire mahak ki mingchat asida leibak pumbana chaukthokchaba phauri bharat ki nupi cricket team na london gi lord stadium da ahanba test match mai pakre masi puari da lehoragadoba mai pakpa amani aikhoi gi team na run chani humphutara da mai pakhi masi ta sunatana lords ki sanglaba puari da masi nupi singi ahanba test match ni lampak asida lising amaga chamapan marfu humdoida bharat na ahanba cricket world cup mai pakhi haujikna nupi gi sakti na leibak asigi mingchat purakli maruf singh apikpa maung da honaba sisu achauba khongthang amani kerala gi inarkulam gi south chitur da sana khotnaba gi anoba maung amagi maramda khangbada yamna nungai mapham dugi school lamada sanskrit club amalai mapham dugi oja avilasna yamna angakpa mawongda miyamda sanskrit pu pamna hale project asibu aksar kanduk haina mingthole masida sanskrit pu football ga mari laina ba wahi singa loinana chatminna duna line khangali masi tambada sunungai loinana sanababu su ningsinghale aigi nungsi jaraba irei bakcha sing haukhiba nomai jing numitta Bikram 1 mai pakna thagat khibadagi irai bakcha sing chauthok chaba pokchare aikhoi bharat macha pumbna space sector gi puari da lehoragadoba mikup asibu uhore masi private sector amana semgatpa biksit bharat ki ahanba rocket ni aikhoi gi naha oiriba innovator singna thajadaba thabak kaya tawthorakli makhoina angakpa haisingba amadi khangba kanba udli aikhoi gi space sector asi matam kayadagi lanai miyoidagi lapna lerakli masina hiram masibu pamjaba naha singna makhoi gi apambadu phangdana lakli naha singna makhoi gi haithoi singthoi ba uthoknabagi damak private sector bu saruk yahanbani madugi mahai malem pumbana ure maruf singh aikhoi naha singna bigyan gi lamda bharat ki mamai haigat halle science olympiad asi malem gi khwairigi maru oiba competition amani masida masing yamlaba mahiroi kaya saruk yari physics chemistry biology amadi mathematics ki olympiad pangthokli sangamnaba asida bharat ki timna mai pakna saruk yari physics olympiad ta aikhoi gi mahiroi manga makna sana gi takaman phangduna ahanba mapham phangle haukhiba chahi kaya da pangthokhiba physics olympiad ta aikhoi gi mahiroi singna sanagi natraga lupagi takaman phangduna lakhi chemistry olympiad tasu aikhoi gi mahiroi singna sanagi takaman phangli haujik phawgi oiba khwaidigi phajaba performance oiri biology olympiad tasu aikhoi gi mahiroi singna takaman loina phanglakli ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯌꯥꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯑꯅꯤ, ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯃꯔꯤ ꯐꯪꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯄꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯌꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯀꯥꯊꯣꯟꯁꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩ ꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯕ, ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯐꯛ ꯋꯒꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯔꯨꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯛ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯧꯅꯥ ꯌꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯐꯧꯗꯣꯛꯂꯒ ꯈꯟꯗꯣꯛ ꯈꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯏ, ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯏ꯫ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯆꯪꯏ꯫ ꯐꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ, ꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯂꯦꯟꯗ ꯏꯪꯏ, ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯁꯥꯏ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯔꯤꯅꯒꯔꯒꯤ ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯇꯟꯖꯤꯂꯥꯅ ꯋꯒꯨ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ꯫ ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ, ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯒꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯎꯅ ꯎꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯍꯨꯁꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯗꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯁꯣꯜꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯋꯒꯨꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯈꯟꯊꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯗꯤ ꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯤꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯍꯧꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔ ꯂꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒ ꯆꯥꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕ ꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯕꯤꯖꯅꯣꯔ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯈꯤꯋꯥꯂꯥ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯕꯤꯗꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯗꯦꯁꯤ ꯍꯔꯕꯦꯜ ꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯦꯃꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ, ꯒꯤꯂꯣꯏ, ꯃꯨꯂꯦꯊꯤ, ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯑꯇꯦꯛꯄ, ꯗꯥꯜꯆꯤꯅꯤ, ꯑꯦꯂꯥꯏꯆꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯌꯥꯒꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯍꯥꯀꯨꯝꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯍꯔꯕꯦꯜ ꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯂꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃ, ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯄꯥꯜ ꯂꯥꯈ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 26,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ, NCC ꯀꯦꯗꯦꯠ, ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯨꯡꯕ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯒꯤꯅꯤꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ UPꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ 12ꯗ ꯎꯄꯥꯜ ꯀꯔꯣꯔ 35 ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯈꯤ꯫ UPꯒꯤ ꯁꯥꯟꯁꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯎꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ 숲나기 미오이 크라크키 나타나 마싱 팅암 드라바 지바 카야기수 마움 오이리바니 구자랏키 기르 장글다 차락나 차히 훔푸기 마퉁다 인디언 그레이 혼빌 아무카나 마훔 사르가 레이레 마시 기르다 마망다기 얌나 체크신나 칸나 호나르크파다기 아무카나 힝갓나바 호나바기 마헤이니 혼빌 시 장글기 라우바 하이나 코너르미 마코이나 우헤이차이 아마디 우헤이기 마루싱 아두 랍나 산도이 마루싱 아두나 장글다 우팜비 오이나 하원두나 우멍싱부 아상 아마나 픽탈란바다 마팅 팡이 아이나 돔다 하이즈닝이 마루디 아이코이나 아이코이기 푼시다 마탐 크라당 오이르바수 프라키티가 로이나비우 이마기 밍다 우팜비 아마타 오이르바수 타비우 나시 아이코이나 우팜비 아마 타진 키바나 둥다 호럭리바 나하싱이다막 아상 아마나 탈라바 생라바 이싱 눙싯 가야나 쿠돌 오이나 탐놈 가다우리바니 아이기 눙시저바 이레이 박차싱 아이코이 뿜바나 캉나레 마두디 나시 플라스틱나 이싱 눙싯다 아모트포 오현두나 레박 뿜바기 아와바 가야 마욕나리 싱글 유즈 플라스틱다기 토럭바 아모트포 가야시나 마탐 가야다기 프라크리티부 아망 아타 토할리 마름시나 plastic si mapham chana sina wa haibasi yamnamak maru oi maruf singh bihar gi sita marida west to well sina aikhoida achowa khudam ama oire mapham sida amot akai singbu recycling tawduna yamna puning chingsiningai oiba mawongda bens kaya sarami bens ama sabada chorakna kg nipugi single use plastic changlami masi yamna kanba kuina chatpa yamna nungai ba oibada natana eco friendly su oi masi sarkar gi school park sing amadi miyam tinba mapham singda thanei maramasina miyam da ising nungsi singhan baga loinana miyam busu mikap thohali masi honabada local unit singa loinana district administrative ki thaudang chawno yawi masina lamlam gi thakta thabak pibagi tanja amasu phanghali sitamari gi hona jaman na takpadi reduce reuse amadi recycle asi supna gi kholao amanatana aikhoi gi punsi gi maru oiba saruk ama oire haibani maruf singh adom ning singlam gani aina man ki baat ki khuthang da ganesh usab ki maram da haijaki bado aina haijaki laibak na saba ganesh ki puja taugadabani haina pop na saba ganesh natraga atop lamda gi pusil lagpa ganesh ki muti nataba aikhoi gi lamgi लैखोम न साबा मुटी दमक युम द लापियु हिरम सिग मरी लैनना मियोय कयाना अइगोंड पाउ पिरई अमदी मसागी मोट फोंगदुक पिरई मखोइना अइगी वखलो न सिबु यानिंग ब फोंगदुक पि मखोइना लैबा की मुटी दमक सिजनगनी हाइना अचेत प वासक लौरमे मतम चाना मन की बाता हिरम मसिगी मतांगदा खन नैनब असिना अइखोइदा अचुंब खोंगथांग थांगनबगी तंजा फंखी हाइना इबिरखी aina amuksu hanna haijari laibaki muti damak puja tawiyu masina prakriti gi puja tawba amasu oigani aigi nu sizaraba iraibak chasing aina miyoi amakhakki maramda panjage masi taraga adomsu yamna chaukthokchaba pokani miyoi asi science amadi innovation gi lamda honabada malem sida miyamna khangnari dumoinamak mahak mahaki horokfam kaude khudong chaba phangbada mama laibakpu ikai khumnaba su kaude miyoi adudi manipur gi dr ronaldo laishramne maming ronaldo kaurabasu thabakti astrophysicist ni mahak japan da thabak tauri aduga young galaxies achoba kanglup adugi thijiliba tim aduda saruk yari mahakna kari kari thabak tauri haiba adom khangningani mahakna achoba kanglup asigi maming manipur gi phajaraba loktak ka mari lainana loktak proto cluster haina tholi loktak aseng ba isingi yamna chawraba part amani loktak lekta tauriba phumdi singna angakpa landscape ama semki masi ubada achowba samudra da apik apik pa ithat kayana tawbugum ui matawasumna universe ta young galaxy singna achowba kaya singat sagali ngasi manipur gi loktak supnagi laiba ki map ta ubada natana संसार पुंबदा मंगाल पीरे मसीगी होन जमलसी भारत पुंबगी चौथोक चनिंगाइनी अखोयगी नहा सिंगना अचौब परा अमतंबिरी मरुरी मखोइना मखोइगी चनलोन चत काउथोकतना ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯀꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯒꯁꯠ 7ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯎꯁꯣꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯎꯠꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅꯔꯤ ꯄꯣꯠꯆꯝꯄꯂꯤꯗꯒꯤ ꯄꯠꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯊꯝꯄꯂꯤꯗꯒꯤ ꯀꯠꯆ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯄꯣꯠꯆꯝꯄꯂꯤ ꯏꯛꯇꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯄꯨ ꯈꯪꯅꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯐꯤ ꯂꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯋꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯀꯦꯔꯂꯝꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯁꯥꯋꯨ ꯀꯂꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯪꯏ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯥꯗꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯈꯥꯗꯤꯁꯤ ꯃꯍꯥꯠꯃ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯕꯅ ꯈꯪꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯈꯥꯗꯤꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 12ꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ 6x ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯣꯔ 1,000,000 ꯃꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯥꯗꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯕꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝ ꯈꯟꯐꯝ ꯈꯪꯂꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯆꯣꯡꯄ꯭ꯔꯦꯡꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯋꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13 ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯈꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯣꯠꯀꯤ ꯃꯈꯣꯜꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯗꯦꯕ ꯕꯔꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯥꯁꯛ ꯊꯝꯈꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯣꯡꯄ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣꯛꯕꯣꯔꯣꯛ ꯐꯣꯛ ꯁꯣꯡꯁ ꯕꯥꯎꯜ ꯁꯣꯡꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯐꯣꯛ ꯁꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯦ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदुंग बपुंग तरानी थोई तारे मणिपुरी दा नुमिदुंग बगे पाओ ताबिरसी।

0: अरे
1: कका सी सांग सु इनरे साखी साबुन सु थमनरे पता सु कका न पाइबिरे को
2: पाइरे पाइरे
1: सेल सु एकोइन पाइजेरे सी मंगाई ने लोब योन बन हाइन बदो
2: होय होय होय सा सा यारे सी मंगाई
3: आ दो कका
2: हाय हाय
3: जति कका द नमा सि ओसन न थरांग पुनम त बोलो रे बनीना हुजे सि द संग द क्रॉस आ खदि म कका ओइ बुदो गुता
2: ए मदु दि आइन लोइन पुथो कनी
1: याम नुमाई जेरे कका याम नुमाई जेरे कका
3: तव दो कका नसा खोन न मुहानि यबिदि खुजिते यमिन खुसु काकागी ओरेबनिना काकागी वाखन द करी खलिबगे सिनी
2: जासा तेम खायरग पुनसिन लगे
1: पुनसिन भाई दि काका
2: यम अमन बसे तेम खायरग इनखोन ओनथो लगे हाइबा
1: काका न दि आइखोय दुम लैजो तांथो ओइना हाइबिगी बदुन कमा
2: ए लाइबबुदि लायो नंगी मनिंगी साक्षंग से थपिरा मगे
1: साक्षंग सिद दि आइखोय पुन लैबदि पुसिति चंदो मानदि द काका
2: लाइब तारे दना हौजिकति इनखोल से आगी ओइरबनिना
3: हे बो काका न आरजु सुमरो
1: तो
3: लेबिदि तुमले जोहारी छिदि रो कका नसा करिम जाय जगेबा
2: हायोनी हायोनी
3: नसा न साखी सा बोल ले दुखी नावा मन दिप किदम दिए
2: ये आईदी को मो को ये जसा से यामदी यामद्रे लुपाली सिंह अनि सिना जागे वामल ओय ए
3: यार यार
1: यामन करे
2: अदुगने इगो हल नहा किन लुपा चमा सिना नंगी कोर्स ओयरो
1: कका
2: अदुगने मरु ओय बा मना सेम्बुन दुदिने कायथोप या देको नो इबे मदा पिसिलो
1: पिसन देने कका
3: नंग जो मिसलु को
1: पिसन निके दुरु गितो
3: कायथोप
1: इनु कुंदी
2: आदो फारिया दु दिसा सा आइस दुकान हांग मतम योरे सनर सिको
3: बरे बरे बरे बरे कका सनर
1: सि अदि दिताओ
3: सनर सि अदो दो
1: दो
3: इबानी हजिक यांखे यांखे सि थों नरगदी करबा दी मपुं फारनि
1: हौजिक ती मपुं सोइदन फारनि अदुनि तो आइगी फोन मचा कर होम बम तंग दिलै दबे यादि तो
3: चुमिनि नंगी फोले तो बसिना इवानि से पाउसी फोन बसि यादि
1: अदुनि यबै तो अदु इसा सिंगी मंगा तरुक खाग अतै दुरु फोले बले गियानि को
3: कुंदु लगी मंगा थमोरगा त्र मंगा ले दिदना फंगनि तो
1: अदु व पम मनि तो करबार गी पोट लो बुचत पाइसी हयंग आयु इबानी सबने दोइन
3: ता हे कदा जनो तो कदा जनो
1: कइ नो हिसिबो
3: इबानी पुने सत पे सोंगा ग्यार
1: स्करी गिनो इबानी चजा दिसिबो
3: ओ दोनो सेक्शन गरे जाने मी
1: ओ
3: मी यानी एक छोर बा दुम पियर त्रै ता
1: ओ हो हो
3: आइ दे बसुन खंग बगी लो तो लो सिन तो की बगी या बगी वारे बा
1: ओ दुदी तो तंत सता रे ने
3: आइ तोम द लोना आइ यें से हाइ दे रगे
1: परे परे
3: दुग पोरा गे को
1: यार यार यार इताउ तो बुदा आइ लो यार इताउ न पनो बसिलो
4: इमागि नाउतोंबा नंगुना बुग्लामा बोइसाबो मामासु थाबोलोय दरे ये हेने हेने बु कपे एने सिदि नायगि बुङो तो तो मामा खमलां इ लागे लागे लागे वा बनु बुलोय देदा मै हाक तबु फंतो किगेदा इसामा बु पिथाके छेछे नाउतोंबा इमागि मनि लाउलाउ युम फाउबो योलगा चारबनिको मसिनु पासे मल्लबा फैरेंग तुरेंगलबा तुरगदबा जिंगा मजे मरांग न खाबा चाकसंगसिदा युम ओइरबा सिमक्सु मीगिदा तांगलिनिको अमन बहिदाल अनि खक्सिदा चन्ददा लैबागदा थारग हिप्पयाव कांखन नुंखनसु अमत्त खन्दना लेलिबनिको हैगि पुच्छि हे मयाय कारबनिसा नंग इपुरोय बतनतना इनुम सिमा

धन्यवाद लाइश्रम भीमो। नमस्कार दोस्तों, खुरमजरी मैं निंगथोकुंजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत धमाका। आज का पहला गीत आप सुनेंगे इंटरनेट पर वायरल हुआ एक खूबसूरत हरियाणवी गीत बैरन, जिसे बंजारे ने अपनी शानदार आवाज दी है। प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे इस गाने ने अपनी हरियाणवी गायकी, प्यार, दिल टूटने और तड़प पर आधारित बोल और आकर्षक धुन के कारण श्रोताओं के दिलों को छू लिया है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों आजकल मौसम का मिजाज ऐसा ही चल रहा है, कभी तेज धूप तो कभी अचानक बादलों का डेरा। अगला गीत हम लेकर आए हैं बारिश पर, जिसे गाया है सोहेल ने। ये लंबी दूरी के प्यार और बारिश की बूंदों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ एक बेहद मधुर हिंदी गाना है।

ट्रेंडिंग गाने में अगला गीत है पंगा फिल्म से शाहिद मालिया और असीस कौर की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

दोस्तों कार्यक्रम में पेश है अगला गीत मीना बाजार। केशव त्योहार द्वारा गाया गया एक बेहद ही प्यारा गीत है जिसमें एक ऐसी प्रेमिका का वर्णन है जिसके आने से कमरा किसी चहल पहल भरे बाजार की तरह जगमगा उठता है।

दोस्तों साड़ी संजू राठौर के वायरल मराठी हिट गुलाबी साड़ी का एक जोशीला हिंदी रीमेक है जो थी फिल्म धमाल 4 से। अब सुना जाए मेरी बनोगी क्या, जिसे गाया है रितो रिबा ने। यह प्यार और इजहार के एहसास पर आधारित एक गीत है।

दोस्तों, अगला गीत आप सुनेंगे एक पंजाबी गीत थिंकिंग ऑफ यू, जो यादों और अधूरेपन के एहसास पर आधारित है, और इस गीत को गाया है AP ढिल्लों ने।

दोस्तों, नवजोत आहूजा का वायरल हिंदी गाना खत एक बेहद खूबसूरत और भावुक रोमांटिक गाना है जो गहरे प्यार, सादगी और किसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की भावना को व्यक्त करता है।

0: Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: Catch the Rain ka sandesh bahut seedha hai. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें. आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा.
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th.

0: leteng bira
1: a
0: aduga langjam gi phina semba punnana ba ama maduna khokhari haina kawe ko
1: a
0: mananganda sagol saban haduna mina tongba nuaina ba ma yawi aduga sagol dubu tongli ba miduna satlanning ba maikeida satpa yanana ba sagol chukli haiduna ama su yawi
1: o
0: masidi sagol do bhajana kebi bina teko puning ma mai kai tu da puba ya na ba semen
1: maro su thok ta ba sagol tong laga ne sagol kangjai sana ba ai si aru ba mani kwa sagol su asing bana ta di aro na ta ne ba ba
0: yam chumi sana hai si adu bu miyo ba hai si di be ma ji ba khudi mak ta gi sing ba hian bani na ma khoi ba phajana training pi dim ni adu ga sana ba su tam bi di ba
1: o
0: लुघर लुघर बा कयादि हैरेगा अमदुदि करिगी हैरोय नमोय नत्रो से बोल मनाक तमन सानरोय दो पुगुदुरिनि अदुगा कांजेय दुन बोल येरेगा गोल चनन बा सिकतनि
1: बाबा बोल हाय दु कांग्रुम हायने सु खंगना दायने अदुगा येइन बचाय दुना कांजेय कांगु कवे हाय दायने चुमब्रो बाबा आइन हायसा
0: चुमे चुमे समना कांजेय हायने सु खंगनै को maduna sagol tongerga kangjei sanai haiduna masana sibu sagol kangjei haina khangnari bani sagol kangjei sanabam kangjei bungse ani le mapal kangjei bung haiba ama hapta kangjei bung haiba ama masida kangjei se aya mamatam da sane adudagi khoimam bazar da lai ribasina akui gi mapan kangjei bung kawi ko aduga sana kunung mamang da lai ribasina hapta kangjei bung haina khangnai
1: बाबा हंदती कै गुम्बा सगोल कांगजै सानबगी पाउ तारा दिने आइबु सुपु बियु को आयाम येनिङे बा
0: उददे को पुनी इसाब पुरग को यंगनगनी से कांगजै बुंगसे हौजिकति पोलो ग्राउन्ड हाइना खंगनगरे मसि मालेम गी ख्वाइदगी लिरबा सानबु अमसुनी को
1: ओ अदो को बाबा सगोल टोंग लगा सानबना तबा कांगजै सानबा हाइबा मसाना मलेबदो अदुना कै हाइना खंगनगे
0: ओ मदु खोंग कांगजे गवे खोंग कांगजे हाइबसिदि हुकी मसाना दोना खोंग ने चेन चेन दुना कांगद्रुम दो थो मेरगा सानाबा मसाना ने मदु सुवाय खुगि लेबाक मणिपुर गि ममिंग लेरबा इनात कि मसाना मखलमनी कोइबेमा आइ खुगि इरमदम मणिपुर से पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स हाइना भबो ममिंग चलिबनी नंग सु खंगि दुदि
1: होय अदुबुदि खंगे बाबा मणिपुर बु एखोगि सानरो केना मालेम द मसकता इनि को
0: मानि मालेम द मसकता इनि अदुना मणिपुर सिंग से मसिदा खांग मकनबा निंगहनदाबा थौना लिंगजे लैबा हाइबताय मणिपुर सिंग से को कनानासु खंगबीदाबा सिंगलोन मापन द क्वेश्चन बा पिखरब लैबा गसिदा पोकपा सानरोय केयाना माले मसिदने मणिपुर कोबा सानाबदा मांगजिन थाबा लैबा मचाम लै हाइबसे खंगन ख्रिबनी ने
1: याम जाव थोजनी गाय निको बाबा आईडी सानेरो सिंगसा याम नुसी ए बाबा वाम त हंगोगे
0: हंगुने इशाना खंगिंग बदो हंगो बाबा ना खुंगे न गाय लेरमनी
1: सगोल कांगजै ने तबा खों कांगजै हाइना खंगनाबा अमलै बदो अदुगी मरम द सुहाबियो
0: हाइगे हाइगे तार खों कांगजै हाइबा मसाना सिसु मणिपुर गी ओइबा लीरबा मसाना अमनी कांगजै सानाबा हाइबा सिसु शरीर छरा हितब यादे मणिपुर दी महुसागी फजबा अमदि हवा नुसित फबदा ममिंग चलिनि मागी लैसा दा होबा यनसांग नापी मालेम गी कैथेल द फंगलिबे सिंग मानदे को महाउ लैबा अचांग फबा याम न हेले असिगु म चौखत पर लैबाग न सागे फंगद्रबा यनसांग नापी ओइ वाइ कयासि चाबदगी ने मणिपुर मसागी मसासे मसा महु से तिनजंग काइजंगदे अदुगा कोई न साना रब सुगुआ गंदे खोंग कांगजे नुपा थोपा मसान मखलम नीबे मा
1: खोंग कांगजे साना बसे याम न नुंगाई ब मसाना अमनी को लमजे लियांग द बसुया रोय मिना सिंग द बसुया रोय पंगल कन द बसुया रोय पुमनम असी चेन द बया रोय को बबा
0: जमी जमी अम वाली खांग ब कन द बसुया दे
1: ओ होय
0: अदुगा साना बुंगी पाक चौसे याम न दरकार ओय
1: बाबा अदुदि एशुया निंगे मरमदि कांगद्रुम दुना पालादि माइग काइनि को
0: माने
1: अस खोंग कांगजैसे बाबा खुराय दग सोइदना पालादि को खोंग तेकनि याम सोकनि बु
0: चुमी चुमी याम असो पन्नं ग्रब जानि बेमा थाइनदि खुदै बु सेलबसु 홍그라우 쿠덩 여부 아마부 셀럽수 거 마두기 마탁다 아토퍼 피에마나 셀리바 피도 마두 쩨나나바 콩라 기시 기신드나 셰실라민 가리기노이다 셀리비도 난다락다나바
1: 아
0: 강가니고 아 프리카티 가야릿간데 아두부 하우직티 야마나 사칼레 마이밋 콩쿠트 속다나바 산나로이 쿠딩먹기 로이나 바자다 팡아 아두나 속부기 장세 야마나 한다라바니 yam chaukhale da hojikti
1: baba sagol kangjei khong kangjei heba masana sa ai khoi gi lebak manipur da di khwai da gi hena sakhang na ba masana ni ko
0: mani isa na hai du chumi sa se se se sana khona ba pam ba heba se ai khoi gi lebak ki mi singi lu da tong da pok pa da gi adom yau jar la ban
1: adu ko mukna kangjei heba ma su tai ge masina karam ba makhal gi masana no adu su tak pio baba
0: tumi lai madusu thaina mamangai di sanarak laba masana mani thaina gi pandit kaya na iramba lairikta masi yau ba thi nei khage baning thogi haktata masana se sanarami ko adu bu mukna kangjei haiba se khungang gi lamda ayam bana sanarami na hai nei masi de yauri ba mukna haiba sina miyoi ani na sanabani do sanaroi ani du gi manung da amana manam lebakta tan bani
1: o thaina su sanana ba sa makhal makhal yam leram jani ko
0: mane mane leirib jani aduna aina ga sai haigi biduni manipuri singdi sanaba haiba se makhu gi lud tong da yau kar bani haidana adudagi mathang mathang ning thau singna pana haidana khaidu le ko aduga pana kangjei haina sanana mi na haini
1: adwa sagol kangje haibasi di sanaroi adwa tangai fadana sagol thoba haitaba yade ko
0: yade sagol thoba hai singdaba yade sagol thobuda hai singlaba misa oigadamni manipur di thaina mamangai degi hona sagol thobu tongbase aya mana haib jani be ma na lingai matam gi ningthau aya mase sagol tongduna chane lan sokna ba sapada su lanmi loina mak sagol tongni nupa di thambu thango ne Pangan suan bini hari ba nupi bau ba segol thobo hari bagi wari lady ni ne.
1: Thau na apa bini nupi dubu mami ngai kau gue baba. Yam kang ni hari bio ba.
0: Hai hai hai. Karena abu iru ni, se moy rangi ning thau na macam ni kan na thamjari bi sing ku bagi mamom moy rangi thui bi.
1: Oh, baba, ai se tare.
0: Pare pare pare ngasih gitu lo selasiko.
1: Hoi baba, lo selasih.
0: Solo solo.

दोलाई तुम बिगी दमक वाईकुप्पो बिना वाबीबा कया दो वाहन थोक लाई क्रबा अधुंगाईगी अहल सिंह न थंबीरम बपाऊरोगनो मतम अमदा पंगहाई हाईबा पंगशक सकपनी खल्लोबा अदुबो नसी दी खुनाई अशिदा येंगलोबदा ककनिंगाई याव दबा वाफम निहाईबा मयेक सेंगलगली नसी तो वाकल तारगी ठेंगलोबसु ठेंगना खरदी वाकल ताब उजरी अदुबो अशिंब साब मसान मसाबु कनानु खंगजद्रीब खरदी नसीशु पाउरव असिगी वानथो खंगजद्री हेनदुम मपुनिंगब ताउब हुईकी मतौगुम तांजा मेंजा चादना चोंसिन चोंसिन मसागी इकाई खुमनब मांगहनचरी मसागी थोइना खंजद्री

땅질린나 마큰 장남다이다 좀 더럭봐 나쁨기 마마이다 커지나 시커봐 하우직수 레이박 모자싱나 아야한바 떠오리

हमोम सदानंद की खुंचल मिसे तहजब लेनादी वाखल इसई लाथोजबाद लोशनजरी खुदल तमजब इसई सैसपिंग मथंसी निब नाब मालमान युनाम नौमाइम सोलेंद्रो हाउम दिव्याश्वरी देवी खुंद्रापम जीवन सिंह मयंगम अनुरेखा हमोम सदानंद सैरिंग मथंसी एकेंद्र तेनसुब धनबीर नावरेम एकेंद्र तेनसुब मंगी मयंगम बी के पांजीमयूम सुरेंद्रजीत एलांगम अरुण कुमार नौमाइम

0: शिक्षण भी गदबा नापी मांगन बंगम्बा मसल सुन या और बसाथी दी संगी मको किए पनी काउबीरगनु लोमी सिंगे मरु साथी
1: EE maintenance to PSE dina thadorok pawarol amagi matungena PSE digi ising seasonary bamiyamna July kuntra mathoi lesing ani kuntaruk pawbagi manungda all bill arrears amasung meter gi dues concern office ta laklaga verified tawraga thidok pinabaning singjeri July kuntra mathoi gi matungda di thidok haudaba consumer singi details mayamadu online portal da verified tawbuda kudong chanaba upload tawragani hainasu khangalagli
2: अदमन तोंगन तोंगन बा मखल मखल की थारुम कया लेपन ताबिरी बा शी आकाशवाणी इम्फाल लगीनी हाउसिंग मिदांगी पुंग तरे मखाई तारे मणिपुरी ते पाओ ताबिरसी
3: आकाशवाणी इम्फाल खेत्रमयुम चित्रभानु न पाओ पाजरी आहान बदमरु ऐब पाओ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हैरी मणिपुर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रोनाल्डो लाश्रम ने विज्ञान के लम्दा

0: दी ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: मकलम तेलगी थरुम क्या संदुक्त न तहंजरी वासी आकाशवाणी फालगी एफएम संगाई चैनल दिगनी हौजिक संदुक चेरी था सिगी सही सकपा आर के सत्यदीता सही रेंगबा अहिवम कृत्यमला सिंह पुथोकपा हिक्रुजम देवेंद्रा

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी इम्फाल हौसे निमिदांगी पुंग मापल तारे मणिपुरी द पाओ ताविरसी।
4: आकाशवाणी इम्फाल खेत्रमयुम चित्रभानु न पाओ पाजरी। मणिपुर की मिराबाई चनु ने ग्लासगो द चतरीब कॉमनवेल्थ गेम्स की नुपी की किलोग्राम निफु निपान की वेट लिफ्टिंग द सनागे तक कमान लौरे। किलोग्राम हूंफू की नुपा की वेट लिफ्टिंग इवेंट मणिपुर की चनम्बम ऋषिका ने अनौब गेम्स रिकॉर्ड थमजना लुपा की तक कमान लौख्रे। ऋषिका ने स्नेच इवेंट किलोग्राम चाम कुलमाथु थांगातुन अनौब गेम्स रिकॉर्ड थमकी। क्लीन एंड जर्क किलोग्राम चाम निफुम दुई थांगातुन पुन किलोग्राम चनी हूंफू मरी थांगाकी। बॉक्सिंग दंगसी निमिदां पुंग तरामाथु मिनिट निफुम गा चप मतमदा मंदेंग बम जादो मनीसु किलोग्राम यांखेमुंगा की कांगलुपता प्री क्वार्टर फाइनल मैच द पाकिस्तान की सुमना रेहमन गलंबा तोंगनगनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी मणिपुर मचा एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रोनाल्डो लैश्रम ने विज्ञान की लम्द थोदो हिंदो पथबक तौदुना लोकताक पाटपो सुनतेगी लेबा आसगी मेपत ओहनब खकनतना मालेम पुंबद मंगाल पीरे। आकाशवाणी की थोंगदंग से संदोकी बा प्रधानमंत्री की पुनगीवा मन की बात की चामकुंठा तरुक सुबह थोरम द श्री मोदी ने हाय जापान द लेबा नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी द रिसर्चर ओइना थबक तोरीबा मणिपुर की थौबाल जिला की खांगापोक्ती डॉक्टर रोनाल्डो ने नौ नसेंब गैलेक्सी की मरम चिजलीब टीम सरुक यादना ममिंग मणिपुर की फजरब लोकताक पाट की मिंग लौदना लोकताक प्रोटो क्लस्टर है मिंग थोंख्रे प्रधानमंत्री ने थगत फोदी। मणिपुर की नहा होब एस्ट्रोफिजिसिस खांगबोक अवंग लेकायद्रब लाइश्रम महाजन सिंह लाइश्रम सना हनबी मचा मंगाद इटोन तोनी। हौजिक अमेरिका की कैलिफोर्निया लेरीब डॉक्टर रोनाल्डो ने नौन पुथोब गैलेक्सी कांगलुप आकाशवाणी इम्फाल फोंदोरक्ली।
5: मन की बात है थोड़ा से मिलियंस ऑफ इंडिया की तोान तोान मौमदीब मैं पाक्सन ताब हाँ खाब लौटाक है मनपुर लौटा है खाब हेना खबन खजे मनपुर की फजब लौटाक वाखा तारे डिस्कोवरी की वाक की मतदा मैं मचाता मनपुर इंडिया की तोान तोान मौमद खाद मन की बात की प्रोग्राम से चाव मेना फाजे।
4: लेबा के तीन मफम लुनना मणिपुर कारगिल विजय दिवस पालन थोर पाथोगी। राज्य सरकार ने सिंधु ने इम्फाल की पेलेस कंपाउंड मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ऑडिटोरियम पाथोब थोरम वागद राज्यपाल अजय कुमार वला ने हायद भारत लाई की मरे बाब कथप मरिंग जिल उत्प की अचोब खुदम लेहोरगनी। मांग है मैंने तुम की मेरोल पुनगनी। राज्यपाल ने हाय मणिपुर की मोय क्या लानी की तोान तोब कांगबा सेवा तौब अचोब थोदी। थरमद वागद मुख्यमंत्री यूनान खेमचान सिंह ने हूद्रा निपा चुपन चतक ऑपरेशन विजय भारत लानी की मोय चौंगा कुंतर मरबाकीदमक थवाई थी मदद थौना फरब मनपुर मोय मंगाई कारगिलान भारत लानी की अपुब थौना उत्तर मालेमद मोदी तौब ग शक्ति उठी। मांग है भारत की डिफेंस फोर्स लेरीब लानी लेबा की चीरब चौथब लेटेन होना लेबाई परिबू थमली। थोरम गृहमंत्री गोविंद दास कौथोजम टूरीजम मंत्री खुराइजम लोकल एमएलए चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर डीजीपी राज्य की सिविल पुलिस की मकोक थोब ऑफिसर सरुक याखी। असम राइफल्स मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन सिंधुनी की डिस्टिक्सटीन यूथ सम्मेली कुंतरुक अनीब इडिशन मणिपुर यूनिवर्सिटी चटरी एम्पावरिंग यूथ फॉर अ बेटर फ्यूचर है हिरम पाथोब समिट अ हय लोशनी मोय चाम हेब सरुक यारी। 11 के वी कोईरेंगे फीडर बी एस एफ फीडर लाइन कौनब मफम सिंह कोईरेंगे नीलकुटी लुवा संगब बी एस एफ कैम चिंब मफम सिंह हयें अयु पुंग Tarata Badigina, Nungtil Pungmari Fawa Maimutkani Hari, MSPDCL Gi, Lamlong Subdivision Gi, number one Gi Manager, Topo Cheroleman Hai, Koiringegi Ring Road Ki Hosita Teriba Sam Sabasi Ginglaga, Kongtanga Sit Lokulapani. Pradhan Mantri Narendra Modi na Viksit Vibrant Village Program Lising and Nikuntarukta Saru Yariban Hasinga Video Conferencing Kudando Warisa Nekre Thoromasita Leba Asigi Rajya Masun Union Territory Punna Magdagi Nahalising Mari Henbana Saru Yari Viksit Vibrant Village Program Asina Leba Asigi Tongan Tongan Bakanglu Sangi Marukta Apun Bagi Saktam Sagar Pagalunena Lam Lam Dam Dangi Oiban Nachanabi Emadi Kala Sanskriti Kangan Bada Achogomating Oiragani Sarkana Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill Lising and Kuntaru Hayang Lok Sabada Putok Lagani Hayang Lok Sabada Putokataba Business Lister Bill Ashiyari Paul Lizeri.

नुंगाई नुंगाई रबा थरुम क्या लांथक तुन तहन जरीबा सी मेगाहर्चा मा हुम दशमिक मंगा दशंदोक जरीबा आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चैनल दिगनी हौजिक पुंफा मसीदा पुदुने लाक्चरी तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंग दिगी मणिपुरी फिल्मी सही खुदोल गहन बद तामिन सी इंग लिसिंग अनी तरा तरुकता पुथोकी फिल्म एखोगी एखोई पाबुंगी फिल्म सी नीलहरी फिल्म की बैनर मखादा पुथोकी फिल्म अमनी फिल्म सी की डायरेक्टर ना हेमंत कुमन फिल्म सी की वारी बिनोरंजन ओइनाम गिनी फिल्म सी की प्रोड्यूसर ना विज्ञानी हिदंग मयुम अमदी वचन चोंगथामनी अखुने निंगसिंग बयाय फिल्म सी दा देनी लिगमाबम बाला हिजम लैसांगथेम तोंथोय बिजू इसिता इथोय यामलबा एक्टर एक्ट्रेस ना सक्तम लांग किबा यामना पामना किबा फिल्म सिंगि लक्तमनी फिल्म सिदगी वितन सोरी सेंजम सुरेन पुष्परानी चित्रा सुस्मिता मदी लिंदा गे पुनब खोंजेल दा अबुंग वाइना सैरेंग बा मदी राहुल ब्लू ना सैरांग बिशैनी इसे कुदोल तमजरी तामिनसी

0: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते
1: हैं। तांजरकीबा गीत सिकलो ने ना तांका सीधा तोंगान तोंगान बा सिसक पसिंदे की गीत लांथुक चबा लोशिंजरी आकाशवाणी इम्फाल हौजे निमिदांगे पुंग तरा मखाई तारे आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल थौरम लोशिंजनबगी पुंगफम अदु यौरकली हयेंग जुलाई की तांग कुंतरेत निंगथोकाब नुमीद इंग लिसिंग अनी कुंतरुक अयु की पुंग मंगा मखाई ताब मतम दा आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल थौरम छंदोप होगजगनी ngasigi damaktadi tabiriba singi mafamdegi kainena baya thangni jeri pinavirasi jay hind

सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 22 सेकंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों की कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल जिसका नाम है हर सिंगार और हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। हर सिंगार एक ऐसा फूल जो रात की खामोशी में महकता है और सुबह की पहली किरण के साथ अपनी खुशबू बिखेर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी फिल्मों के गीत वक्त गुजरता जाता है लेकिन उनकी महक उनकी कशिश और उनका एहसास दिल के किसी न किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। तो आइए यादों की इस खुशनुमा महफिल का आगाज करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जिसमें मोहब्बत की रोशनी मुलाकात की तासीर और दिल की धड़कनों की नरम सी

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट।

0: बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
2: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार,

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, यानी वो महफिल जहां सदाबहार नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर सिनेमा के उस सदाबहार गीतों की खुशबू, उसके अल्फाज और उसकी धुनों का सफर तय करेंगे हर सिंगार की इस महफिल के जरिए। कहते हैं कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि अपने किरदारों, अपनी कहानियों और संगीत की वजह से इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसी ही एक यादगार फिल्म थी जीवन मृत्यु, जो वर्ष 1970 में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले निर्माता तारा चंद बड़जात्या द्वारा बनाई गई थी। ये एक प्रभावशाली अपराध और रोमांचक फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र, राखी, अजीत, राजेंद्रनाथ और लीला चिटनिश जैसी मशहूर कलाकारों ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। यह फिल्म बंगाली सुपरहिट फिल्म जीवन मृत्यु का हिंदी रूपांतरण थी। दिलचस्प बात यह भी है कि राखी जी ने इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा, जबकि धर्मेंद्र ने पहली बार पर्दे पर एक सिख युवक का किरदार निभाया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी मिली और आज भी इसे धर्मेंद्र साहब की बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों में गिना जाता है। बाद उसके संगीत की जाए तो इसका संगीत इतना प्यारा था जिसने दर्शकों से मोहब्बत, सपनों और जीवन साथ के खूबसूरत एहसास को अपनी मधुर धुनों में समेट रखा था। ये गीत आज भी शादियों, पारिवारिक समारोहों और अलग अलग मौक़ों पर उसी मोहब्बत के साथ सुनाई देता है और वो गीत है झिलमिल सितारों का आंगन होगा। इस मधुर युगल गीत को अपनी जादुई आवाज़ों से अमर बनाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और राधा जी ने, इसके खूबसूरत बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने और अपनी बेहद सुकून देने वाली धुनों से सजाया है संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और जज्बाती फिल्म की और वो फिल्म है शक्ति। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। उनके किरदार, उनके संवाद और उनकी कहानी बरसों तक जहन में जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक शाहकार फिल्म थी शक्ति। साल 1982 में निर्देशक रमेश सिप्पी के ये कालजयी फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक यादगार लम्हा बन गई। वजह भी खास थी, हिंदी फिल्मों के दो महान नायकों, एक शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब, इन दोनों ने पहली बार और इकलौती बार एक साथ पर्दा साझा किया। एक तरफ उसूलों पर अडिग पिता और दूसरी ओर हालात से जख्मी बेटा, दोनों के बीच का टकराव सिर्फ कहानी नहीं बल्कि रिश्तों, फर्ज और मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान बन गया जिसने हर दर्शक के दिल को छू लिया। दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म में विजय का किरदार पहले राज बब्बर साहब निभाने वाले थे, लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन साहब ने इस भूमिका में दिलचस्पी दिखाई तो यह किरदार उन्हें मिल गया। वहीं राखी गुलजार को कई लोगों ने सलाह दी कि अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाना उनके करियर के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इन बातों की परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब के साथ अभिनय करने का मौका मिलना। फिल्म शक्ति को आलोचकों और दर्शकों दोनों का भरपूर प्यार मिला। इसे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया, लेकिन यह सम्मान दिलीप कुमार साहब के नाम रहा। आज भी शक्ति को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में शुमार किया जाता है। ऐसी दमदार फिल्म का संगीत भी उतना ही खूबसूरत था। इसके गीतों में रिश्तों की नज़ाकत, एहसासात की गर्माहट और धुनों की ऐसी कशिश है जो आज भी दिल को सुकून देती है। तो आइए हर सिंगार की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म शक्ति का एक सदाबहार नगमा। यकीन मानिए ये गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचेगी बल्कि आपकी यादों की किसी खूबसूरत कोने तक आपको लेकर जाएगी। तो आइए यही नगमा सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। शक्ति फिल्म का यह नगमा था लता जी और किशोर कुमार साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन साहब ने, और यह फिल्म आई थी 1982 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, आप अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। इट्स fmgoldairdaily@gmail.com। तो हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे यानी फिरोज को दीजिए हर सिंगार की इस महफिल से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्र का पुनः प्रसारण, और 11:40 पर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना सुनहरे दौर का बेहद खूबसूरत किस्सा, यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को गीत मेरे मनमीत में, ठीक 11:40 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। फिलहाल चलते हैं समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस

0: मना रहा है यह दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Pralhad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Divas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. The main function of the Kargil Vijay Divas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India. Indian weightlifter Meerabai Chanu won the gold medal in the women's 48kg event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow today. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85kg in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105kg in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190kg. With this victory, Meerabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember, we do not address stock or company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, बहुत धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज नियरली 15,000 करोड़ रुपीज इन जुलाई सो फार. इन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस रिबाउंड आफ्टर टू स्ट्रेट वीक्स ऑफ डिक्लाइन. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results, and geopolitical developments for cues next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लिवाली का रुख कायम रखा. जुलाई में अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया. सराफा बाजार में दो हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में तेजी. और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर.
0: And listeners, before we go just any further in the program, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Or,

0: खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जुलाई में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआईज ने लिवाली का रुख कायम रखा है इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 14,946 करोड़ रुपए का निवेश किया पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआईज ने भारतीय शेयरों में 3,049 करोड़ रुपए डाले हैं भारतीय ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है जुलाई में उन्होंने एफएआर के जरिए 9,521 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 27,351 करोड़ रुपए का निवेश किया है आशुतोष ये आंकड़े अब बहुत दिनों के बाद हमें जुलाई में अच्छे आंकड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं एफपीआई का रुख उत्साह दिलचस्पी सब बनी हुई है अभी लेकिन अभी हमारे बाजार में जो पैसा आ रहा है हम ये कह रहे हैं कि वहां से साउथ कोरिया के मार्केट से या जहां पर भी एआई वाला और चिप वाले मार्केट थे वहां से पैसे निकले हैं और हमारे बाजार में आ रहे हैं तो क्या ये कुछ टेम्पररी फेज है मार्केट की उथल पुथल का या शिफ्ट होने का या हम माने कि अभी कुछ बड़ा बदला है इक्वेशंस बदल गए हैं
1: देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक टेलवेंड है जो इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स हैं वो बरकरार थे बरकरार हैं और आशा है कि वो बरकरार रहेंगे और इसीलिए जो एक सेक्युलर तरीके से देखा गया है कि फॉरेन कैपिटल का इंडिया में इन्वेस्ट होना उसका निवेशित होना ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हुआ या इस ट्रेंड में कोई रोक लगी है हाँ बीच में जो वैश्विक रूप में जो परिस्थितियां बनती हैं उनकी वजह से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो जरूर मार्केट को उनको झेलना पड़ता है अभी हमने देखा पीछे जैसे मिडिल ईस्ट में जो ट्रेंड रहा उसको लेकर जो एक रिस्क एवर्जन ग्लोबल मार्केट में आता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आया हालांकि इंडिया का इस पर्टिकुलर वॉर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था लेकिन इम्पैक्ट तो ऐसी घटनाओं का ग्लोबल होता ही है एआई का एक ट्रेंड है बीच में देखा गया कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ट्रेंड्स काफ़ी चर्चा में रहे काफ़ी इनके ऊपर फोकस रहा लेकिन वैल्यूएशंस की फिर बात की जाने लगी इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाने लगी तो ये शॉर्ट टर्म में ये सब नॉइस जो है इम्पैक्ट करती है मार्केट को और करती रहेगी लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आप सिग्नल देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो हमने देखा है कि फॉरेन कैपिटल वापस इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करने में सक्षम है
2: Okay, taking the discussion further from where you left, saying that, you know, there is still interest in the Indian market. So, from the retail investor's point of view, Ashutosh, how do you see this in building confidence in the market sentiment?
1: See, as far as the global is concerned, of course, when the foreign capital comes to India, it gives a fillip to the Indian markets. And when the Indian markets recover, they get on a momentum. So that brings cheer among the domestic investors as well.
2: Correct.
1: But time and again, we've been advising that domestic investors, retail investors should not be overly reading into the short-term trends of FII money or what, you know, these investors are doing. Focus far more on your circumstances. What is your investing need that you are investing for? How much you can save and invest? And what is in the long-term scheme of things that you are wanting to achieve? If you have the long-time horizon, equity is still the most promising and the most wealth-generating asset class with the most wealth-generating potential. And that remains a secular trend.
2: We'll come back to you with this discussion. Meanwhile, let's connect with our first caller from Delhi, Sunil Gupta. Welcome to the show. Please ask your question.
3: Namaskar, Masim Gupta
2: ji.
3: सर मेरे एक क्वेश्चन दो थे एक तो ये था कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का कोई एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिसमें कि एक ही जगह से सब जगह इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऑथराइज कोई हिस्सा और लेकिन इनिशियली 32 इयर्स एज वाले के लिए कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस किस सेगमेंट में करनी चाहिए
1: जी तो पहला सवाल आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहीं सेंट्रल जगह से हो सकती है देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर एक और प्लेटफॉर्म है एमएफ सेंट्रल के नाम से जो कि दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं के फिनटेक और कैम

0: इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है. आप एमएफ सेंट्रल पे भी अपना लॉगिन करकर डायरेक्ट प्लान्स में म्यूचुअल फंड्स के सहजता के साथ निवेश कर सकते हैं. तो आप एमएफ सेंट्रल एक बार ट्राई करिए, शायद आपको वो कन्वीनियंट लगेगा. आप उस पर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी, नॉमिनी चेंज करना, बैंक अकाउंट अपडेट करना, इस टाइप की ट्रांजैक्शंस भी आप सहजता के साथ एमएफ सेंट्रल पोर्टल पे कर सकते हैं. तो आप उसको देखिए. दूसरा आपका सवाल, 32 साल आपने उम्र बताई, लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाहते हैं, शुरुआती निवेशक हैं आप, और अगर आपको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक या दो अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करें. ये फंड्स आपका करीब 70-75% पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं, बचा हुआ 20-25% पैसा डेट मार्केट्स में निवेश करते हैं. तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेशन का, इक्विटी मार्केट्स के की बढ़त का लाभ आपको प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं. लेकिन क्योंकि 20-25% पैसा डेट में होता है, तो जब भी मार्केट गिरती है ये फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, और उस वजह से एक नए इन्वेस्टर को पैनिक ना हो, वो बहुत जल्दी निराश हताश ना हो जाए. तो वैसा थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देने में रिलेटिव व्हेन द मार्केट्स फॉल, ये फंड्स सक्षम है. तो अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्रेसिव, दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में अपना SIP शुरू करें. भले ही थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करें, इसको साल 6 महीना एक्सपीरियंस करें. अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसके बाद अपनी निवेश की मात्रा बढ़ाएं.
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से, दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
1: जी,
2: मैंने अपना स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाया था और मैं गोल्ड ETF परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गोल्ड ETF के नाम से वहाँ गोल्ड ETF डायरेक्ट के नाम से नजर नहीं आ रहा है, गोल्ड फंड के नाम से नजर आ रहा है. तो क्या ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड एक ही चीज है, और दोनों के एक्सपेंस रेशियो में क्या कोई फर्क है? धन्यवाद.
0: जी, गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स का मकसद एक ही होता है, लेकिन ये दो अलग प्रोडक्ट्स हैं. सो मकसद एक ही है कि ये आपका पैसा गोल्ड में निवेश करते हैं, और गोल्ड के दाम जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके रिटर्न मिलते हैं. लेकिन गोल्ड ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है. आप गोल्ड ETFs की जो यूनिट्स हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज पे किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं. अल्टीमेट आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको गोल्ड के रिटर्न्स का ही मिलेगा, लेकिन इसकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होती है इनकी काफी, और इनको आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं. वहीं गोल्ड फंड जो है वो जैसे आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं. टिपिकली ये होता है कि किसी भी AMC का, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो गोल्ड फंड होता है, वो आपका पैसा इंटर्न गोल्ड ETF में निवेश करता है, और गोल्ड ETF के माध्यम से वो पैसा आगे गोल्ड में जाता है. तो आप गोल्ड फंड को एक पास थ्रू व्हीकल मानिए. आपका पैसा गोल्ड फंड में जाएगा, गोल्ड फंड से गोल्ड ETF में जाएगा, और वहां से गोल्ड में निवेश होगा. तो एक लेयर ऐड हो जाती है. जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोलना, वो कन्वीनियंस चाहते हैं विदाउट स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट निवेश करने के लिए, तो गोल्ड ETF गोल्ड फंड्स उनके लिए अच्छा विकल्प है. थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं समझता दोनों में है. आप वो चुनाव करें उसका जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है. अगर आपको आप नॉर्मली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास स्टॉक ब्रोकिंग एक डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप गोल्ड ETF की तरफ जा सकते हैं. लेकिन अगर वो नहीं है, तो सिर्फ एक गोल्ड फंड में थोड़ा सा अपना पैसा लगाने के लिए आप एक डीमैट और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट मेंटेन करें, मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनकन्वीनियंस है, कंबरसम है, तो आप गोल्ड फंड की तरफ जा सकते हैं.
3: ऑल राइट, लेट्स नाउ आस्क विशाल फ्रॉम दिल्ली, व्हाट्स हिज क्वेश्चन. विशाल जी, सवाल पूछे.
4: नमस्कार, मानसी मंत्रा, जैसे मैं 35 ईयर मेरी साल है, तो मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन सी म्यूचुअल फंड में, मेरे को हाई रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न भी चाहिए.
0: जी, आप 30 साल के हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न आपने बोला. देखिए, आमतौर पर मेरी सलाह यही होती है कि अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मुझे काफी बेहतर लगते हैं एक शुरुआती निवेशक के लिए. लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न के लिए तैयार हैं, अगर मार्केट डीप करेक्शन होता है 25-30% की, अगर अचानक मार्केट में गिरावट आती है, उससे आप निराश हताश नहीं होंगे, तो आप कोई भी एक अच्छे मल्टी कैप फंड का चुनाव करिए. मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो करीब आपका कम से कम 25-25% आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगता है, और बाकी 25% फंड मैनेजर की के पास लीवे होता है कि वो किस मार्केट सेगमेंट में कहां निवेश करना चाहते हैं. तो मल्टी कैप फंड ऐसे हैं कि एक ही फंड में आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, कम से कम 50%, क्योंकि आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहता है, तो एक रीजनेबली एग्रेसिव आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में, अच्छे फंड्स अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम रहते हैं. तो आप किसी एक या दो मल्टी कैप फंड्स का चुनाव कर उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ध्यान रखें कि हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें. एक साथ अगर आपके पास एक लमसम धनराशि है उसको भी आप जरूर कम से कम 8-10 महीनों में जरूर स्प्रेड कर ही लगाएं.
1: जी, अगले कॉलर हैं कोलकाता से विश्वज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
5: स्वागत है आपका, सवाल. गुड इवनिंग फॉर ऑल.
3: गुड इवनिंग.
5: मैं ओल्ड इन्वेस्टर हूँ. मेन बात है क्या, देखिए 2 साल से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. आप लोग बोल रहे हैं AI, आप बोल रहे हैं टैरिफ, आप बोल रहे हैं ट्रंप, आप बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट, लेकिन करेक्शन जो हो रहा है, व्हाट द यूज ऑफ, आई कांट अंडरस्टैंड एक्चुअली. करेक्शन मतलब क्या है, बैंक का इंटरेस्ट का लेवल के नीचे जाएगी. MF म्यूचुअल फंड किस लिए हम लोग करेंगे?
0: जी देखिए, म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है, रिटर्न आपके हमेशा ही मार्केट लिंक रहते हैं. तो बिल्कुल अगर मार्केट में गिरावट का माहौल है, अगर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट के नीचे भी इनका रिटर्न जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, आपकी कैपिटल में आपको लॉस भी हो सकता है. तो म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक निवेश हैं, इनमें मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिस्क बरकरार रहता है, और इसीलिए इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी बोला जाता है. अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बताया कि आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या बैंक FD इस टाइप के विकल्प हैं, लेकिन इनके रिटर्न हमेशा ही मॉडरेट रहते हैं. ये आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते. अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न इन सभी विकल्पों का देखते हैं तो आपको एक काफी मॉडरेट रिटर्न मिलता है. तो अगर आप मॉडरेट रिटर्न लेकिन श्योरिटी के साथ से संतुष्ट हैं तो यही सारे आपके पास विकल्प हैं. लेकिन अगर आप हाई रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा. मेरा ख्याल जो सही रास्ता है वो एक मिडल पाथ है, कि आप अपना काफी पैसा एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में रखें, लेकिन थोड़ा पैसा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज में भी डालिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है. इन्फ्लेशन के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे ओल्ड एज में. आज आपका जितने पैसे से आपका घर चल जाता है, 5-10 साल में वो पैसे पर्याप्त नहीं रहेंगे. तो उसके लिए आपकी कैपिटल का ग्रो करना भी जरूरी है. तो मेरा ख्याल एक ओल्ड इन्वेस्टर को भी थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है शायद, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक सही विकल्प है.
3: Listeners, you are tuned to your very own favorite program, Market Mantra. And today being Sunday, we are entertaining calls on mutual fund related queries. We are fortunate to have with us in the studios mutual fund expert Ashutosh Gupta. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106.
1: और अब देखते हैं कि सराफा बाजार का क्या हाल रहा है. 2 हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में पिछले हफ्ते थोड़ी तेजी देखी गई. MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.56% की बढ़त हुई और ये 1,43,916 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 1.55% बढ़कर 2,22,138 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.3% की बढ़त हुई और ये $4,070.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ. इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3.8% बढ़कर $58.49 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुई. आशुतोष, सोने और चांदी का जिक्र जब भी आता है और म्यूचुअल फंड्स का जब हमारा संडे का स्पेशल शो रहता है, अक्सर बात होती है, लोग पूछते हैं कि जब बीच में जब सोने और चांदी में काफी तेजी दिखाई दे रही थी तब लोग पूछते हैं कि क्या करें हम सोने और चांदी की ओर जाएं या म्यूचुअल फंड्स की ओर जाएं एक एक सही पोर्टफोलियो बनाने के एक सही निवेश बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत और हर चीज का लाभ उठाने के लिए किस चीज का कितना प्रतिशत हमें रखना चाहिए
0: जी तो पहले तो ये जो रिबाउंड देखा गया है सोने और चांदी के दाम में ये एक मेरा ख्याल राहत के रूप में आया है बहुत सारे निवेशक जो पिछले 2-3 साल में जो सोने और चांदी में तेजी देखी गई है उसको देखकर जो बहुत सारे निवेशक इसमें एंटर हुए थे और फिर इस साल शुरुआत से उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी थी तो मेरा ख्याल ये जो थोड़ा रिबाउंड है ये उनके लिए थोड़ा राहतदायक जरूर होगा और इसी से इन्वेस्टर्स में यही इन्वेस्टर्स के लिए मेन सीख छुपी है कि आप किसी भी हॉट ट्रेंड को किसी भी हॉट एसेट क्लास को जो पिछले एक साल में जिसने ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है अगर आप सिर्फ मोमेंटम चेस कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग में पिछले एक साल में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास है अगर उसका पीछा कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि आपके हाथ निराशा लगेगी आप जब वो बहुत ऊपर उठ चुकी होगी एसेट क्लास आप तब उसमें निवेश करेंगे और उसके बाद उसके रिटर्न मॉडरेट हो जाएंगे या गिर जाएंगे और वो आपके लिए निराशाजनक होगा तो जरूरी यह है कि आप डिसिप्लिन से अपने लिए एक एसेट एलोकेशन बनाएं और उसके उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें चाहे वो एसेट क्लास उतार चढ़ाव के माहौल के बावजूद आप एक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें गोल्ड की जहां तक बात है इसका मुख्य रूप से रोल जो होता है पोर्टफोलियो में वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए होता है ये एक काउंटर वेट है इक्विटी का जब जब इक्विटी मार्केट में गिरावट आई है देखा गया है कि गोल्ड उस वक्त थोड़ी स्थिरता प्रदान करता है जब जब इकोनॉमी में क्राइसिस का माहौल होता है गोल्ड एसेट क्लास क्योंकि उसको एक सेफ हेवन की तरह देखा गया है तो उसके रिटर्न्स उन दिनों अच्छे चलते हैं तो इस एट्रीब्यूट के लिए आपके पोर्टफोलियो में अगर 10-15% आप गोल्ड को रखते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन जरूरी है कि आप इस पे बरकरार रहें आप तब ना इन्वेस्ट करें जब वो गोल्ड बढ़ चला है और उसके बाद आप निवेश करेंगे तो आपके हाथ निराशा लगेगी तो आप एक डिसिप्लिन के साथ 10-15% की एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में कार्व आउट करें और उस पे बरकरार रहें
1: और गोल्ड लेने के लिए फिजिकल गोल्ड ना लें आप ETF ले सकते हैं तो लें नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में भी आपने जैसे अभी एक सवाल आया था हमारे पास कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं
0: जी बिल्कुल अगर आपको सहजता के साथ इन्वेस्ट करना है गोल्ड का फिजिकल अगर आपको निवेश का ही आपका पर्पस है क्योंकि गोल्ड का मुख्य रूप से हिंदुस्तान में पर्पस होता है कंजम्पशन उसको ज्वेलरी के रूप में एक कंजम्पशन एसेट की तरह देखा जाता है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप उसको एज अ फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स जो आज काफी सहजता के साथ अवेलेबल है वो अमंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए
3: We'll come back to you, Ashutosh, on that. Meanwhile, let's ask Subhash from Faridabad what his query is. Subhash ji, सवाल पूछें.
6: हाँ, नमस्कार सर.
3: जी.
6: सर, मैं इसमें मेरा ही एसेट का लार्ज कैप फंड में 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से प्रॉपरली जैसे पहले इसका परफॉर्मेंस था मेरे जो रिटर्न मिल रहे थे अभी तो बहुत कम है इसके रिटर्न अभी तो इस साल तो नेगेटिव में ही रहा तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसमें मेरा ये एसेट लार्ज कैप फंड का
0: जी मेरा ख्याल आप मेरा एसेट लार्ज कैप में बने रह सकते हैं क्योंकि देखिए इसका हिस्टोरिक रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है और एक इन्वेस्टर्स की जो इसके साथ एक्सपेक्टेशन साल दर साल सेट हो गई थी तो हाल फिलहाल में उन एक्सपेक्टेशंस पे शायद ये उतना खरा नहीं उतरा है लेकिन अपने आप में ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये कोई बहुत बुरा फंड नहीं है या बहुत निराशाजनक नहीं हुआ है हाँ जिस टाइप की एक्सपेक्टेशन जो उसने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था उस पे खरे उतर पाना या लोगों को जिस टाइप की इससे आशाएं साल दर साल रहती हैं तो कहीं पे निवेशकों को अपनी एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेट करनी पड़ेंगी एक बढ़ता हुआ फंड है मेरा ख्याल आज की डेट में 40,000 करोड़ के करीब इसका AUM है तो देखिए जो एक एक टाइम पर जिस टाइप से ये रिटर्न दे पाता था या जिस तरीके से ये मैनेज होता था बढ़ते AUM के साथ उसमें थोड़ा सा फर्क आता है लेकिन अभी भी फंड मैनेजमेंट टीम काफी सक्षम है अच्छा फंड है इस साल अगर देखें नेगेटिव रिटर्न तो देखिए इसलिए कि मार्केट के ही नेगेटिव रिटर्न है तो नेगेटिव रिटर्न सारे लार्ज कैप फंड के हैं लेकिन फिर भी अबव एवरेज परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी में इस साल तो मेरा ख्याल आप फिलहाल तो इस फंड में बिल्कुल बने रह सकते हैं
1: जी और सरबजीत हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अभी इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है, हमने इतने समय से निवेश किया हुआ था, अब क्या करें हम, तो आशुतोष अक्सर ये सवाल उठता है. और एक बुनियादी निवेशक के तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमने चलिए 10,000 रुपये, 5,000 रुपये या 1,00,000 रुपये कहीं फंड्स में लगाए हुए हैं, 1-2-3 फंड्स में डाले हुए हैं, तो हमें उसको कितने समय पर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि फंड्स का तो प्रदर्शन बदलता रहता है समय के साथ, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है. तो

0: एक बार आपकी तरक्की होती है, आपकी आपकी इनकम बढ़ती है, कोशिश करिए कि आप अपनी इनकम के साथ आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ा पाएं, तो जो आपकी एसआईपी के अमाउंट्स हैं उनको बढ़ा पाएं। तो साल में एक बार रिव्यू करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति देखिए कि आप अपनी इनकम का कितना प्रतिशत पैसा निवेश कर रहे हैं, और क्या वो दो तीन साल से अगर आपने नहीं बढ़ाया है तो बिल्कुल उसको इस साल कोशिश करिए कि आप बढ़ाएं। तो ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा, आप अपनी एसेट एलोकेशन देखिए कि अगर आप मानिए 75% इक्विटी 25% डेट की एसेट एलोकेशन के साथ चले थे और मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से एसेट एलोकेशन हिल गई है, मानिए इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और जो 75% थी वो अब 85% हो चली है, तो एक साल बाद रिव्यू करके थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए जिससे जो आप रिस्क रिटर्न इक्वेशन बनाए रखना चाहते थे वो बनी रहे। और तीसरा आप नजरिया यही है कि क्या कुछ फंड्स ऐसे हो गए हैं कि जिनमें बदलाव की जरूरत है, वो निराशाजनक हो गए हैं और पोर्टफोलियो में कुछ उलटफेर की जरूरत है। लेकिन वो सिर्फ पिछले एक साल या पिछले 6 महीने के रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड मत करिए, कम से कम 3-4 साल का होराइजन किसी भी फंड के लिए रखिए। बेहतरीन से बेहतरीन फंड ऑल्सो गोस थ्रू अ रफ फेज, तो किसी भी फंड का कुछ समय के लिए अच्छे रिटर्न ना देना ये बड़ा ही स्वाभाविक है। तो छोटे छोटे टाइम पीरियड पे साल डेढ़ साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। और जरूरी आप उस अगर आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया भी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो शायद स्मॉल कैप बाजार ही निराशाजनक रहा है, तो आप ये भी देखिए कि जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इन सारे मुद्दों पर आप विचार कर फिर अपना डिसीजन।
1: क्योंकि अगर पूरा बाजार ही गिरा है, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो जो उन पर निर्भर है, अगर उनमें उनमें ही गिरावट आई है और अगर फंड भी लगभग उतना ही गिरा है तब तो उसको वाजिब मान सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात है और इसी तरीके से देखना चाहिए। और अगर किसी फंड ने उसके आउट ऑफ द लाइन भी अंडर परफॉर्म किया तो भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। हर बार जब आप फंड बेचने का डिसीजन लेते हैं अब आप टैक्स भरते हैं, तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप फंड्स चेंज करते रहेंगे तो मेरा ख्याल आप टैक्स तो भरपूर भरेंगे, शायद उसका लाभ उतना नहीं उठा पाएंगे।
2: आशुतोष, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम दिल्ली। केशव जी सवाल पूछे।
3: हाँ जी नमस्कार, आकाशवाणी मार्केट मित्र, मैं आकाशवाणी को ये पूछना चाहूंगा। सबसे तो सवाल मेरा कि जो आप लोग आखिरी में एक बताते हैं कि पंजीकृत ही से आप हमारा इनसे कोई विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये जो इतने बड़े अच्छे एक्सपर्ट आते हैं आपके मंच पर, तो ये एक्सपर्ट ही तो हैं, पंजीकृत ही तो होंगे, आप इनको जो बुलाते हैं, तो आप कृपा करके ये कंफ्यूजन क्यों हम लोगों को समझ नहीं आता, इनके पर हम बात का विश्वास करें क्या ना करें? धन्यवाद।
1: देखिए, मार्केट मंत्र आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, उसे मानना या नहीं मानना, और चूंकि पैसा आपका है तो फैसला आपका है, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। जी सरबजीत, अगली कहानी पे चलें।
2: Yes, let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter of corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon and currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators, including first quarter of corporate earnings, foreign institutional investors, and rupee and technical levels. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the Brent crude, which has risen above $100 per barrel amid West Asia tensions and soon to be held US Federal Reserve meeting. Ashutosh, we'll discuss this, but first let's connect with our caller. Manoj ji, sawal poochhe.
1: Manoj ji, aap sun pa rahe
4: hain? Haan ji, namaskar.
1: Ji, namaskar.
4: Ji, main ye maine kuch mutual fund apne sell kare the is saal April mein.
1: जी हेलो जी जी जल्दी से पूछ रहे हैं, सब वक्त बहुत कम है।
4: जी हाँ जी हाँ, तो मैंने जैसे 2,25,000 जैसे उसकी कॉस्ट थी, तो मैंने 2,00,000 की जो है वो सेल करी थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने 2,00,000 की सेल करी है और उसके ऊपर कुछ एप्रिसिएशन आ रहा था तो वो क्या जो कैपिटल गेन होगा वो प्रोपोर्शनेटली होगा या कैसे होगा वो?
0: जी नहीं, कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है जो आपकी सबसे पुरानी यूनिट्स बिकी हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हमेशा यूज होता है। तो आपने 2,25,000 के निवेश में जो 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, जो सबसे पुरानी यूनिट्स हैं उन पर जितना गेन होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
1: जी आशुतोष, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी धन्यवाद आपका
2: लिसनर्स बिफोर वी रैप अप अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज परचेज नियरली 15,000 करोड़ रुपीस इन जुलाई सो फार इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस रिबाउंड आफ्टर टू स्ट्रेट वीक्स ऑफ डिक्लाइन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र सी यू टुमारो अंटिल देन Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फिरोज तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब वक्त हो चुका है आपके अपने इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ने का तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ और ये नगमा है फिल्म अनाड़ी से गोल्डन एरा के ये वो नगमे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए और हमेशा आप उससे सुनना चाहते हैं गुनगुनाना चाहते हैं ये वो गोल्डन एरा के सदाबहार नगमे हैं जो आज भी दिलों को उसी मासूमियत से छू जाते हैं और ये नगमा है साल 1959 में आई फिल्म अनाड़ी का ये खूबसूरत गीत दिल की नज़र से आवाज़ है मुकेश साहब की और लता जी की और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने

नजर से। अनाड़ी फिल्म का यह नगमा था मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों कहते हैं जब मोहब्बत की आहट दिल तक पहुंचती है तो धड़कनों में भी एक नई रवानी पैदा होने लगती है। कुछ ऐसा ही एहसास समेटे हुआ है अगला ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, जो बरसों बाद भी अपनी कशिश बरकरार रखे हुए हैं। साल था 1960 का और 1960 में ये फिल्म अनुपमा आई थी। उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा था, धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार। इस गीत को अपनी बेहद खूबसूरत आवाजों से सजाया है लता जी ने, और साथ ही साथ उनका साथ दे रहे हैं मन्ना डे साहब। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शैलेंद्र साहब के लिखे इस गीत को हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। माफ कीजिएगा, इसमें सिर्फ लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है।

धीरे मचल ए दिले बेकरार। अनुपमा फिल्म का ये नगमा लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, मोहब्बत जब अपने ख्वाब बुनती है तो अक्सर उसकी तस्वीर चांद से शुरू होकर दिल में बस जाती है, और जब उस ख्वाब को शब्द मिलते हैं तो जन्म लेता है एक ऐसा नगमा जो वक्त की गर्द भी फीका नहीं कर पाती। पेश है साल 1965 की सदाबहार फिल्म हिमालय की गोद में का एक बेहद दिलनशी गीत, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। इस अमर गीत को अपनी दर्द भरी और सुकून देने वाली आवाज से सजाया है मुकेश साहब ने, इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और इन्हें यादगार दोनों में डाला है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की। तो आइए कुछ लम्हों के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर चलते हैं, जहां चांदनी, मोहब्बत, आरजू और एहसास एक साथ सुरों में ढल जाते हैं।

आशा जी और महेंद्र कपूर साहब के गाए इसी गीत के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद मंजू रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक में बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में दो अन्य लोग घायल हो गए। निफाड तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti. Besides, former education secretary Anita Karbal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
2: Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
4: Jis par Pakistan ne avaidh tarike se kabza kiya.
2: The Defence Minister was addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48kg event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85kg in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105kg in the clean and jerk, another Games record to finish with a total of 190kg. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Mirabai Chanu on her gold medal victory. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instructions of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been named Chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed Chairperson of the Delhi Minorities Commission. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support their empowerment, ensure the welfare of minority communities, and safeguard their constitutional rights. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places.

तेरी आनी का धोखा सा रहा है, तेरी आनी का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। अजब है रात से आंखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है। सुना है रात भर बरसा है बादल, सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12:24। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

वैसे मिलन की रुत तो है, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो ऐसे दिल मिलते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और वैसे भी हम सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसके साथ हर मौसम हमें अच्छा लगता है। और आपको तो मालूम ही है, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक सही गाना आपको उस इंसान के बेहद करीब ला सकता है। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, अभी के लिए।

वैसे बात तो सही है, जब कोई इतने प्यार और अदब से सलामे इश्क पेश करे तो फिर कोई इनकार कैसे कर सकता है। और वैसे भी कभी कभार भूल समझकर दिल की बात मान लेनी चाहिए, क्या पता जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ यहाँ से शुरू होने वाला हो। अगला गीत आप ही के लिए।

वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा यूथ रोज खुद से यही सवाल पूछता होगा कि हमें प्यार हो गया है और अब हमें क्या करना चाहिए। मैं बताऊं आपको, पर आपको ना बॉलीवुड वालों की तरह जीने मरने पर नहीं उतरना है, बल्कि मजबूत फैसला लेना है। और वो मजबूती तब आएगी जब आप उसी रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा रेडियो वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि दो डांस नंबर सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।

एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले, एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले, और एक हकीकत है कि वो मुझसे दूर बहुत है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात के हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:43 और 4 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप, और अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

आपको पता है इस गाने की सबसे अच्छी बात क्या है? इस गाने की सबसे अच्छी बात है सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद के सजने संवरने पर खुद ही मुरीद भी हो जाते हैं तो इसको कहते हैं सेल्फ लव। हम दूसरों के इश्क में गिरफ्तार तो हमेशा होते हैं, क्यों ना आज खुद के इश्क में कैद होके देखें। अगला गीत सिर्फ आपके लिए। नफरत

वैसे ये बात तो सच है कि दुनिया बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी मोहब्बत की जरूरत होती है। जब आप किसी की नफरत का जवाब भी मुस्कुरा कर देते हैं, प्यार से देते हैं, तो सच कहूं बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी पिघल जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रतिबंधित मादक पदार्थ इस महीने की 21 से 25 तारीख के बीच मुंबई और कल्याण में रोके गए 3 अंतर्राष्ट्रीय डाक पार्सल से बरामद किया गया। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलिविका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amritlal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
2: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
2: The defence minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Devas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said, developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instructions of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been appointed chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack, claiming one life and injuring 29, was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Balot, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilogram in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190 kilogram. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Mirabai Chanu on her gold medal victory. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 International to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in the allotted 20 overs. Early opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in the allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

मुकेश की आवाज पे सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म दुनिया ना माने से। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार और माला सिन्हा ने फिल्म का निर्देशन किया था वी अवधूत ने और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म बहू बेगम से। और ये फिल्म आई थी 1967 में, जिसका निर्देशन किया था एम सादिक ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। संगीत रोशन का था और इस फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। और अब आपको सुनाते हैं अगला गीत, जो है फिल्म छाया से लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज़ में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:34 और 34 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म आर पार से।

ये सदाबहार गीत आप सुन रहे थे फिल्म आर पार से, और ये फिल्म आई थी 1954 में, और आवाज थी गीता दत्त की, संगीतकार थे ओपी नय्यर साहब, और इस गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था श्यामा पर, और ये गीत अपने दौर के सबसे लोकप्रिय प्रस्तुतियों में से गिना जाता है, और इस फिल्म के गाने काफ़ी सदाबहार थे। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई मूवी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कुछ गाने समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि वो हर दौर में एक नए अर्थ के साथ फिर से दोहराए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और ऐसा ही एक गीत था ये जो भी आपको हमने सुनवाया। शैलेंद्र साहब के शब्द थे, शंकर जी के, जयकिशन का संगीत था और लता जी की आवाज़ थी। और जब ये तीनों संगम एक साथ मिलते हैं तो एक अमूल्य धरोहर बनकर सामने आते हैं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगला गीत

गीत सुहाने प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक के बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड़ तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीरा बाई चानू को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part.

फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात ज़रूरी समझी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 52 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी वो प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के एहसास को, रात के जज्बात को अपनी बातों से, अपने गीतों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

जब दोस्ती प्यार में बदलती है तो पता है आपको सबसे इसकी खूबसूरत बात क्या होती है, आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, सामने वाले को पता होता है कि आप कितना बेसुरा गाते हैं, मैगी जला देते हैं और बात बात पर आपको गुस्सा आता है, फिर भी अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपको सराहता है, तो समझिए कि आपको एक सही इंसान मिल चुका है। अब ये इंसान आपकी तकदीर में हो या ना हो, पर उसे मांग लेना चाहिए। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

वैसे ये बात तो सच है कि ये जो नसीब और किस्मत वाला मामला है ना, बड़ा दिलचस्प होता है। जब तक लाइफ में कोई सही इंसान हमें नहीं मिलता, हम सारा इल्ज़ाम इसी नसीब पर डालते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा होता है, सब कुछ पहले से छपा होता है। और इस सवाल का जवाब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, दो लोग मिलकर अपना नसीब तय करते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, अभी के लिए।

इस गाने में एक बात बहुत अच्छी कही गई है, मतलब पते की बात है कि मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसमें जिगर चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, और हाँ थोड़ा सा पागलपन भी जरूरी होता है। मोहब्बत में कोई लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ तो सामने वाले की फिजूल बातों पर भी मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत के लिए दिल के साथ साथ पागलपन भी जरूरी है। अगर आप भी इसी पागलपन में हैं तो ये अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।

मुझे तुम तोहफे में कोई फूलों का गुलदस्ता मत देना, मुझे तुम तोहफे में कोई फूलों का गुलदस्ता मत देना, देना हो तो किसी फूलों वाला पौधा देना जिसके फूल आने का मैं इंतज़ार करूं, ठीक वैसे जैसे मैं तुम्हारा करती हूं। तुम्हारा आना भी तो इन फूलों की तरह है, तुम्हें भी तो महीनों लगते हैं मुझसे मिलने में। जब तुम्हारे दिए पौधे में फूल आएंगे मैं खुश हो जाऊंगी, जैसे तुमसे मिलकर होती हूँ। मुझे तुमसे प्रेम में कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक छोटा सा फूलों वाला पौधा। पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज में।

अगर आप भी किसी के गोरे रंग पर या फिर सिर्फ लुक्स पर फिदा होने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि हमारा रंग, हमारा रूप, हमारे लुक्स कुछ दिनों तक रहते हैं। गोरा रंग ढल जाता है, यौवन ढल जाता है, लेकिन प्यार ताउम्र साथ चलता है। तो कोशिश करनी है हमें कि उस रिश्ते के साथ आगे चलें जिसमें प्यार ताउम्र साथ चले।

हमारी आजकल की जिंदगी थोड़ी अलग है ना, जिसमें भाग दौड़ ज्यादा है और सुकून बहुत कम है। बड़े बड़े मकान, ब्रांडेड गाड़ियां और ना जाने क्या क्या हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी शांति से बैठकर हम ये नहीं सोचते कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है अपनों के साथ से, उनकी हंसी से, उनकी मुस्कुराहट से। तो जनाब, ईंट पत्थर का मकान तो बनता रहेगा, लेकिन वक्त है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम कोशिश करें अपने सपनों का घर बनाने की, जहां छोटी छोटी खुशियां हमें, हमारे परिवार को सुकून देती हो।

रात शुरू में ही मैं आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार, 3:10 पर हम राही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी। नीता अग्रवाल मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र, मंजू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत दिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। श्री शाह ने कहा कि इस शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
2: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination, and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan, and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
2: The defense minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instruction of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been appointed chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagat Singhpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack, claiming one life and injuring 29, was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Baloth, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Meerabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilogram in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190 kilogram. With this victory, Meerabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय वाय रात्रि के 3:11:24 प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हमारे जीवन में साथ का बहुत बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में सजता है तो उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

मन्ना डे और वाणी जयराम की स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। जयदेव का संगीत था, नक्श लायलपुर की लिखी रचना। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम परिणय। और अब सुनते या क्या कहा जा रहा है।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आस का पंछी इस फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। मित्रों रैना काल को सजाता ये चांद यकीनन हर दिल का चहेता हमेशा से ही रहा है। यहाँ तक कि किसी से वादा करवाने के लिए भी चांद को किस खूबसूरती के साथ सहारा या कहीं गवाह बनाया जा रहा। सुनिए इस गीत में।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना राजहट फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। मित्रों साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अंग कभी कभी बच जाता है। इसी खूबसूरत वानगी से सजा ये गीत आइए सुनते हैं।

0: बात है।
1: आशा भोसले और जगमोहन बख्शी की आवाज़ से सजा ये गीत टैक्सी ड्राइवर फिल्म से अभी आपने सुना। 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, सचिन देवबर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी।

मित्रों हमराही में हमारे दिल के या कहें जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारी जिंदगी में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है। कुछ

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो।

हैप्पी नैयर का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी ने ये गीत लिखा था। गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय इस गीत में था। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55। साथियों, रात का समय कई बार नींद ना आने का समय भी बन जाता है, सबब कुछ भी हो। अब नींद ना आने के दो कारण कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ उसी सजा ये गीत आपने सुना। पोस्ट बॉक्स नंबर 999। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत था, प्यारे लाल संतोषी की लिखी रचना थी।

राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे हैं। साहिर लुधियानवी की लिखी रचना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर जादू। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई, नाम काला पत्थर। साथियों, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छी हो तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे मिनट या लम्हों का कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

मुकेश और हेमलता के स्वरों से सजा ये गीत विश्वास फिल्म से आपने सुना। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और गुलशन बावरा की लिखी रचना। साथियों, अब अगला गीत सुनते हैं। कई बार मन में कोई शिकायत होती है किसी तरह की, तो हम कहना भी चाहते हैं उस शिकायत को, और हम ये भी मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति बस जल्दी से हमारी इस शिकायत को समझ जाए और शिकायत दूर हो जाए। लेकिन ये कैसी शिकायत है, ज़रा सुनिए तो।

हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत कैफी आजमी का लिखा था साथियों मोहम्मद रफी आरती मुखर्जी की आवाजें थी फिल्म का नाम दो दिल जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में।

आरती मुखर्जी और मुकेश के स्वरों से सजा ये गीत आरंभ, ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। आनंद शंकर का संगीत था, हरीश भजानी ने ये गीत लिखा था।

लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की स्वनों से सजा ये गीत अभी आपने सुना आए दिन बहार के इस फिल्म से। 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफिड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियां और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतियों को मौका दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को वाशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Kashwani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
2: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11:14। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

गीता दत्त की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना बाजी फिल्म से 1951 रिलीज फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिल लुधियानवी की लिखी रचना। और अब सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज़ से सजा ये गीत हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया था। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम दुनिया झुकती है, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में। साथियों, किसी से पल भर की पहचान भी कई बार दिलों के, परिवारों के रिश्तों को जोड़ देती है। प्रेम में इस तरह की बात होती है। जी हाँ, प्रेम बहुत कुछ होता है। ये पहचान आगे जाकर एक परिवार के रूप में भी स्थापित होती है।

0: तलत महमूद लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत छोटे बाबू फिल्म से अभी आपने सुना। 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मदन मोहन का संगीत था, इंदिवर की लिखी रचना। साथियों, अरुणिमा में सजते हैं जीवन के सुंदर रंग। इन सभी रंगों से सजकर जब अरुणिमा अपना रंग बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने, ऐसे सपने जो हम सच कर सकें, सच गए हों। बस उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहें।
1: जीवन पथ में है कहां पथिक तुझे आ रहा,

फैशनेबल वाइफ, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मन्ना डे साथियों की आवाज़ें थी, सुरेश तलवार का संगीत था और भरत व्यास की लिखी रचना थी।

सुमन कल्याणपुर के स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। साथियों, जो भी रिश्ता जुड़ता है उसमें कोई ना कोई तो पहली पहचान, पहली मुलाकात जरूर होती है। कारण उस पहचान का जो भी हो, उसी पल भर की पहचान को बताता ये सुंदर नगमा अभी हमने सुना। और अब कौन आ गया है कि आंखों में चमक आ गई है, दिल में खुशी छा गई है।

महेंद्र कपूर की आवाज़ से सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। शिवराम का संगीत था, नीरज की लिखी ये रचना थी। साथियों 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सती नारी। और अब अपने घर आने का खुला निमंत्रण देता ये गीत।

जिंदगी। भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज उसी सजी, ये रचना आप सुन रहे हैं। जयदेव का संगीत सुदर्शन पाकिर की लिखी रचना, फिल्म का नाम दूरियां। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों और अब जीवन के सुख पिरोती ये रचना।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत रजनीगंधा फिल्म से अभी आपने सुना। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सलिल चौधरी का संगीत, योगेश की लिखी रचना, और अब सावन को आने दो।

जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। राज कमल का संगीत, गौहर कानपुरी की लिखी रचना। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सावन को आने दो। और अब आज के अरुणिमा प्रोग्राम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना।

आशा भोसले की स्वर से सजा ये गीत सावन की बहार दिखाता आनंद देता ये गीत जुनून फिल्म से आप सुन रहे हैं। 1978 रिलीज ये फिल्म। वनराज भाटिया का संगीत, योगेश प्रवीण की लिखी रचना। आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति थी ये साथियों। अब अरुणिमा कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए तथा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जर्मनी में बर्लिन प्राइड फेस्टिवल में हुए घातक हमले के संदिग्ध को पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में मार गिराया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। संदिग्ध की पहचान अब्दुल बल्लौत के रूप में हुई, जो लेबनानी मूल का एक जर्मन नागरिक है। बर्लिन शहर के बीचों बीच हुए इस हमले के बाद लगभग 24 घंटे की तलाशी अभियान के बाद उसे मार गिराया गया। बर्लिन के अभियोजकों ने बताया कि संदिग्ध ने पहले आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह में शामिल होने की कोशिश की थी। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रेडेंस ने इससे पहले प्राइड फेस्टिवल के पास वैन से लोगों को कुचलने और चाकू मारने की घटना

0: घटना को संदिग्ध आतंकी हमला बताया था। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति को मौका दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सेना के ठिकानों पर ईरानी हमलों में जॉर्डन में 3 और इराक में एक अमरीकी सैनिक की मौत हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर चौथा राष्ट्रमंडल खेल पदक जीतने पर वह भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti. Besides, former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan. The Defence Minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women with Shyam Bala, Malti Verma, Lata Sodhi, Sanrika Sharma Jha and Renu Bhalla appointed as members. Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission with Kuldeep Singh and Mohammad Haroon as members. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support their empowerment, ensure the welfare of minority communities, and safeguard their constitutional rights. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagatsinghpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. US and Iran have paused attacks for a second straight day, raising hopes of renewed negotiations on an interim ceasefire after nearly 2 weeks of escalating military action. US Ambassador to the UN, Mike Walls, said yesterday, President Trump is giving diplomacy space, noting that Oman, Iran and other negotiators have been engaged in talks at all levels in recent weeks. Walls also dismissed suggestions that the US is running low on interceptor missiles used to defend against Iranian attacks. An Iranian army spokesperson yesterday said that Tehran halted retaliatory attacks in the region in response. Indian weightlifter Meerabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. And that is the end of this news bulletin.

समय हुआ है प्रातः की 5:11 और 38 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था भाभी की चूड़ियां। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, सुधीर फड़के का संगीत था, नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना थी। साथियों, सावन का मौसम बस आने को ही है और प्री मानसून तो बरस ही रहा है, रिमझिम रिमझिम फुहार। अब सावन का जब महीना आता है, ये दिन आते हैं, तो ऐसे में जो फूल हैं, पत्ते हैं, वो बहुत ही अच्छे से खिलते हैं, क्योंकि आवश्यकता अनुसार पानी भी तो उन्हें मिलता रहता है। तो इसी तरह की फूलों की जो डालियां हैं, ऐसे शब्द से सजा, आइए ये बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं।

मन्ना डे और गीता दत्त के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। एस एन त्रिपाठी का संगीत था। भारत व्यास की लिखी रचना, फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। साथियों, बहुत सारे विचार होते हैं जो अनमोल होते हैं, और उन्हीं विचारों में एक विचार ये भी होता है कि सीखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सीखने की जो प्रक्रिया है ता उम्र चलती रहती है, लेकिन यहाँ बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

नौशाद की संगीत पद की ये रचना आप सुन रहे हैं। शकील बदायूं ने की लिखी ये रचना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज 1954 रिलीज फिल्म शबाब। साथियों समय का पंख लगाकर भोर से दोपहर, दोपहर से शाम और रैना काल और फिर एक नव अरुणिमा का उदय लेकर आता है, पता ही नहीं चलता समय कैसे पंख लगाकर गुजर जाता है।